0: दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में ज़िंदगी का एक सबक मिला। सज्जन ने मुझे बताया, हमने एक नियम बना रखा है, अपना हर काम खुद ही करना है। घर में बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, लेकिन अपनी रोज की ज़रूरतों के केवल पत्नी ही मदद कर लेते हैं। पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे की मदद कर लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। सज्जन ने मुझसे कहा, जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ, तो बेटा समझो बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा, ये काम इससे करवा लूं, वो काम उससे, फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पांव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, लेकिन जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए। क्यों ना एक सुंदर सा नगमे की ओर बढ़े।
1: जरूर राजेंद्र जी, सुंदर सा नगमा की ओर हम लोग को जरूर बढ़ना है। और ये जरूर कहना चाहूंगा अपने सभी सुनने वालों को कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख की ताला किसने लगाया है। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे। सुनने वालों, आप सुनते रहना, ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है। और हमारे कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश का बस यही लक्ष्य है कि हमारे जीवन के ज्योति जो जल रहे हैं उसमें थोड़ा सा और प्रकाश आ सके। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: आ जाओ मेरे राम, बहुत ही जो सुंदर नगमा था, बहुत अच्छा ही लगा सब लोगों को। आप क्या कहते हैं शांता जी इस नगमे के बारे में?
1: ये गीत और भजन जो चलता है ना, आप इस पर जब गौर करें तो इसमें बहुत सारे संदेश आए। हाँ, सिर्फ म्यूजिक नहीं सुनना बल्कि शब्द जो उसमें प्रयोग किया है, वो जग शब्द गाना के रूप में जो उसमें गाए हैं, अगर उसको आप सुनेंगे तो उसमें आप बहुत सारे लाभ निकाल सकते हैं।
2: राजेंद्र जी, आज का विषय जो हमारे है और उस ओर छलांग लगाना है हम सबको, और ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने सभी सुनने वालों को कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। तो हम छलांग लगाते हैं अपना विषय की ओर, विषय की ओर जो आज का है उस ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कनक भवन जो अयोध्या शहर में ना राजेंद्र जी।
0: हाँ, कनक भवन से पहले अभी हम जो छलांग लगा चुके हैं
2: वो तो अभी पार करना है,
0: अभी पार करना है।
2: वो जूस का बोतल खुला कि नहीं?
0: खुल गया जूस का बोतल।
2: मामा का बोतल नहीं खुला?
0: हाँ, मामा भी अपना जूस का बोतल खुद ही खोल लेता है,
2: आजकल खोल लेते हैं।
0: हाँ,
2: तो मामा का बोतल खुल गया दोस्तों, और अभी संदेश जो थोड़ा से बाकी है हम सब उस ओर बढ़ते हैं, फिर छलांग लगाते हैं विषय के ओर आज के।
0: सज्जन ने मुझसे कहा, जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए, एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ तो बेटा समझो बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा, फिर मन हमेशा यही कहेगा हम गोवा जा ही रहे हैं, दो दिन वहीं रहेंगे हम, महीने में एक दो बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले आपको दिक्कत होगी, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में बंद कर लेंगे। सारी जिंदगी खूब काम किया, अब सब कुछ बेटों को देकर अपने लिए महीने के लिए पैसे तय कर रखे हैं, और हम दोनों उसी से आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देता है, टैक्सी घर पर आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर ही टैक्सी आ जाती है, होटल में कोई तकलीफ होनी नहीं है, स्वास्थ्य व उम्र के अनुसार सब एकदम ठीक है, बस कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, लेकिन थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल जाती है। मेरी तो आंखें ही खुल गई, मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूँगा, लेकिन यहाँ तो कुछ ही पलों में मैंने पूरे जीवन की ही फिल्म देख ली, एक ऐसी फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। दोस्तों, जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, जहाँ तक संभव हो अपना काम स्वयं ही करें, जैसे कि हमारे मामा जी करते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं, अपना काम स्वयं करते हैं, अपना गाड़ी लेके जाते हैं, दूसरों को भी घुमाते हैं, और इस प्रकार उनका जो ज़िंदगी है अभी पूरा 25 बरस और बचा हुआ है।
2: ये जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारी व्यवहार एवं हमारे कर्म ही है हमारा भाग्य लिखते हैं। दोस्तों, हम अब छलांग लगाने वाले हैं जो आज का विषय, राजेंद्र जी विषय जो अयोध्या का कनक भवन, छलांग लगाते हैं फिर एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय बड़ा बलवान है।
0: समय बड़ा बलवान है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो हम बढ़ते हैं श्री अयोध्या जी में कनक भवन की ओर। श्री अयोध्या जी में कनक भवन एवं हनुमानगढ़ी के बीच में एक आश्रम है, जिसे बड़ी जगह अथवा दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पहले वहाँ एक संत रहा करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। उस समय अयोध्या जी में इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, ज़्यादा लोग नहीं आते थे, श्री राम प्रसाद जी ही उस समय बड़ी जगह के कर्ता धर्ता थे। वहाँ बड़ी जगह में मंदिर हैं,

0: जिसमें पत्नियों सहित चारों भाई श्री राम, लक्ष्मण, श्री भरत जी एवं शत्रुघ्न जी एवं हनुमान जी की सेवा होती है। चूँकि सबके सब फक्कड़ संत थे तो नित्य मंदिर में जो भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आता था उसी से मंदिर एवं आश्रम का खर्च चला करता था। प्रतिदिन मंदिर में आने वाला सारा चढ़ावा एक बनिया को, जिसका नाम था पलटू बनिया, भिजवाया जाता था। उसी धन से थोड़ा बहुत जो भी राशन आता था उसी का भोग प्रसाद बनकर भगवान को भोग लगता था और जो भी संत आश्रम में रहते थे वो खाते थे। एक बार प्रभु की ऐसी लीला हुई कि मंदिर में कुछ चढ़ावा आया ही नहीं।
1: राजेंद्र जी, अभी तो आपने कहा वो बनिया ना,
0: पलटू बनिया,
1: पलटू,
0: हाँ,
1: तो बनिया किसको कहते हैं?
0: बनिया इसको कहते हैं जो बिजनेस करे,
1: बिजनेस,
0: हाँ,
1: जो गुप्ता होते हैं आदि,
0: हाँ, वो सब बनिया रहा।
1: बनिया,
0: ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और शूद्र, चार जाति रहा
1: ऐसा।
0: हाँ, तो बनिया का काम है बिजनेस करे,
1: बिजनेस करना।
0: अब इन साधुओं के पास कुछ जोड़ा गांठा तो था नहीं, तो क्या किया जाए? कोई उपाय न देखकर श्री राम प्रसाद जी ने दो साधुओं को पलटू बनिया के पास भेज के कहलवाया कि भैया, आज तो कुछ चढ़ावा आया नहीं, अतः थोड़ा सा राशन उधार दे दो, कम से कम भगवान को भोग तो लग ही जाए। पलटू बनिया ने जब यह सुना तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरा और महंत जी का लेना देना तो नगद का है, मैं उधार में कुछ नहीं दे पाऊँगा। श्री राम प्रसाद जी को जब यह बात पता चला तो जैसी भगवान की इच्छा कहकर उन्होंने भगवान को उस दिन जल का ही भोग लगा दिया। सारे साधु भी जल पीकर रह गए। प्रभु की ऐसी परीक्षा थी कि रात्रि में भी जल का ही भोग लगा और सारे साधु भी जल पीकर भूखे ही सो गए। वहाँ मंदिर में नियम था कि शयन कराते समय भगवान को एक बड़ा सुंदर पीताम्बर ओढ़ाया जाता था तथा शयन आरती के बाद श्री रामचंद्र जी, राम प्रसाद जी नित्य करीब एक घंटा बैठकर भगवान को भजन सुनाते थे।
1: राजेंद्र जी, भजन सुनाने से पहले पीताम्बर ओढ़ाया जाता था, तो पीताम्बर माने तो?
0: पीताम्बर मतलब एक पीला वस्त्र,
1: पीला वस्त्र।
0: हाँ, तो राम प्रसाद जी एक घंटा भगवान को भजन सुनाते थे। पूरे दिन के भूखे राम प्रसाद जी बैठे भजन गाते रहे और नियम पूरा करके सोने चले गए। क्यों ना एक सुंदर सा कनक भवन के दरवाजे पर पड़े रहो का भजन चलाया जाए,
1: चला देते हैं राजेंद्र जी।
0: और हमारे मामा जी भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको भी प्रतीक्षा है।

0: कनक भवन का जो सुंदर सा भजन रहा, बहुत ही अच्छा, मनमोहक रहा। कनक भवन दरवाजे पे पड़े रहो, यानी कनक भवन में भगवान राम और सब राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता जी और हनुमान जी रहते थे, इसलिए कहते उसके भवन में पड़े रहो तो भगवान के चरणों में आप सदा रहोगे, ये संदेश रहता है। तो क्यों ना हम आगे का संदेश अपना धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे करके रात बीतने लगी, राम प्रसाद जी की बात चल रही थी, वो सोने चले गए और धीरे धीरे रात बीतने लगी।
1: राजेंद्र जी, ये बात हुआ कि वो कनक भवन जो एक मंदिर है ना,
0: हाँ,
1: एक एक एक तीर्थ स्थान,
0: हाँ वहाँ पे है ना,
1: तो
0: अयोध्या में,
1: ये कहने के तात्पर्य ये संदेश ये देते हैं कि उस दिन कुछ चढ़ावा हुआ नहीं और उन्होंने बनिया के पास अपने व्यक्ति को भेजे ताकि हाँ, कुछ उधार में लेता है।
0: हाँ, एक दिन चढ़ावा ना चढ़ा तो उसने सोचा कि आज नहीं आया तो कुछ उधार लिया जाए, लेकिन जो बनिया रहा वो उधार ना दिए, तो सब लोग साधु संत लोग दिन में भी भूखे सो गए, रात को भी भूखे सो गए,
1: पानी पी कर सो गए।
0: ये चमत्कार सब भगवान ने किया। करीब आधी रात को पलटू बनिया के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया, वो बनिया घबरा गया कि इतनी रात को कौन आ गया।
1: अरे बाप, राजेंद्र जी, क्या भूत प्रेत आ गया बनिया घर का
0: है? जब आवाज सुनी तो पता चला कुछ बच्चे दरवाजे पर शोर मचा रहे हैं। अरे पलटू पलटू सेठ, अरे दरवाजा खोल। उसने हड़बड़ा कर खींचते हुए दरवाजा खोला, सोचा कि जरूर ये बच्चे शरारत कर रहे होंगे, अभी इनकी अच्छे से डांट लगाऊंगा। जब उसने दरवाजा खोला तो देखता है कि चार लड़के, जिनकी अवस्था 12 वर्ष से भी कम की होगी, एक पीताम्बर ओढ़कर खड़े हैं। वे चारों लड़के एक ही पीताम्बर ओढ़े थे। उनकी छवि इतनी मोहक, ऐसी लुभावनी थी कि न चाहते हुए भी पलटू का सारा क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो गया और वह आश्चर्य से पूछने लगा, बच्चों तुम कौन और इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? बिना कुछ कहे बच्चे घर में घुस आए और बोले, हमें राम प्रसाद बाबा ने भेजा है, ये जो पीताम्बर हम ओढ़े हैं इसका कोना खोलो, इसमें 1600 रुपये हैं, निकालो और गिनो। ये वो समय था जब आना और पैसा चलता था, 1600 उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करते थे। जल्दी जल्दी पलटू ने उस पीताम्बर का कोना खोला तो उसमें सचमुच चांदी के 1600 सिक्के निकले। प्रसन्न भरी दृष्टि से पलटू बनिया उन बच्चों को देखने लगा। तब बच्चों ने कहा, इन पैसों का राशन कल सुबह आश्रम भिजवा देना। अब पलटू बनिया को थोड़ी शर्म आई, हाय आज मैंने राशन नहीं दिया, लगता है महंत जी नाराज हो गए, इसलिए रात में ही इतने सारे पैसे भिजवा दिए। पश्चाताप, संकोच और प्रेम के साथ उसने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों मेरी पूरी दुकान भी उठाकर मैं महंत जी को दे दूं तो भी ये पैसे ज़्यादा ही बैठेंगे, इतने मूल्य का सामान देते देते तो मुझे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बच्चों ने कहा, ठीक है, आप एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अब से नित्य ही सुबह सुबह आश्रम भिजवा दीजिया करेंगे, आज के बाद कभी भी राशन के लिए मना मत कीजिएगा। पलटू बनिया तो मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जाए, वो फिर हाथ जोड़कर बोला, जैसी महंत जी की आज्ञा। इतना कहे सुन के वो बच्चे चले गए, लेकिन जाते जाते पलटू बनिया का मन भी ले गए।
1: लो, पलटू बनिया का मन भी लो गए। तो राजेंद्र जी, क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं, फिर आगे के कार्यक्रम।
0: पलटू बनिया का मन भी लेके चले गए बच्चे।
1: पलटू बनिया का मन भी गया
0: गया।

0: बहुत ही सुंदर जो अभी हमने गाना सुना है वो दो पल की दास्तार तो और तुम चले हम कहाँ। तो जब राम प्रसाद जी ने वो पीताम्बर देखा तो पता चला ये तो हमारे मंदिर का ही है जो गायब हो गया था। अब वो पूछे कि ये तुम्हारे पास कैसे आया, तब उस बनिया ने रात वाली पूरी घटना सुनाई। अब तो राम प्रसाद जी भागे जल्दी से और सीधा मंदिर जाकर भगवान के पैरों में पड़कर रोने लगे कि हे भक्त वत्सल, मेरे कारण आपको आधी रात में इतना कष्ट उठाना पड़ा और कष्ट उठाया सो उठाया मैंने जीवन भर आपकी सेवा की, मुझे तो दर्शन न हुआ और इस बनिया को आधी रात में दर्शन देने पहुंच गए। जब पलटू बनिया को पूरी बात पता चली तो उसका हृदय भी धक से होके रह गया कि जिन्हें मैं साधारण बालक समझ बैठा वे तो त्रिभुवन के नाथ थे, अरे मैं तो चरण भी न छू पाया। अब तो वो दोनों ही लोग बैठकर रोए। इसके बाद कभी भी आश्रम में राशन की कमी नहीं हुई, आज तक वहाँ संत सेवा होती आ रही है। इस घटना के बाद ही पलटू बनिया को वैराग्य हो गया और वह पलटू बनिया ही बाद में श्री पलटू दास जी के नाम से विख्यात हुई। श्री राम प्रसाद जी की व्याकुलता उस दिन हर क्षण के साथ बढ़ती ही जाए और रात में शयन के समय जब वही भजन गाने बैठे तो मूर्छित होकर गिर गए। संसार के लिए तो वे मूर्छित थे किंतु मूर्छा अवस्था में ही उन्हें पत्नियों सहित चारों भाइयों का दर्शन हुआ और उसी दर्शन में श्री जानकी जी ने उनके आंसू पोंछे तथा अपनी उंगली से इनके माथे पर बिंदी लगाई, जिसे फिर सदैव इन्होंने अपने मस्तक पर धारण करके रखा। उसी के बाद से इनके आश्रम में बिंदी वाले तिलक का प्रचलन हुआ। वास्तव में प्रभु चाहे या तो ये अभाव ये कष्ट भक्तों के जीवन में कभी ना आए, परंतु प्रभु जानबूझकर इन्हें भेजते हैं ताकि इन लीलाओं के माध्यम से ही जो अविश्वासी जीव हैं वे सतर्क हो जाएं, उनके हृदय में विश्वास उत्पन्न हो सके। जैसे प्रभु ने आकर उनके कष्ट का निवारण किया ऐसे ही हमारा भी कर दे जय। इस प्रकार से पलटू दास जी की जो कहानी रहा और हमारे जो भूतपूर्व डायरेक्टर रहे गांधी सेंटर के वो कुछ अभी कहना चाहते हैं।
1: राजेंद्र जी बिल्कुल हमारे कार्यक्रम में हमारे डायरेक्टर जी जो
0: निर्मला जी जो हमारे भारत से प्रोफेसर जी हैं हमारे डॉक्टर निर्मला शर्मा जी वो गांधी सेंटर के डायरेक्टर एम्बेसी ऑफ इंडिया में पहले 3 साल अपना कार्यक्रम पूरा करके यहाँ से भारत गए हैं और अब वो अपना एक संदेश हमें देना चाहते हैं भारत से ही दूरभाष की ओर से।
1: तो निर्मला जी आपको स्वागत किया जाता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो में और जरूर आशा ये रखता हूँ कि कुछ छोटा सा संदेश आप हम सबको सुनाए।
2: संदेश तो नहीं, सब प्यारे बहनों और भाइयों जो सुन रहे हैं और मेरे प्यारे भाइयों जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्यार। इतना खूबसूरत ये फहोर रेडियो का प्रोग्राम है, इतनी भारत से इतनी दूर तक ये फैला हुआ है और पुराने पुराने हिंदी के भारत के इतने सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं आपको हमेशा। मैं बहुत खुश हूँ फहोर रेडियो से कि ऐसा लगता है जैसे भारत हम दूर नहीं आए थे, जब भारत में ही है जब रेडियो स्टेशन में बैठते हैं। इतने सुंदर सुंदर गीत सुनते हैं आप लोग और पेश करते हैं और अपनी इच्छा पेश करते हैं कि ये सुनना चाहेंगे, इससे छाती एकदम गर्व खुशी से फूल जाती है। इनफैक्ट इतना अच्छा लगता है कि पहुँच रेडियो में पुराने पुराने भारतीय गीत फिल्मों के गीत जीवित हैं फाहो रेडियो की तरफ से। मैं फाहो रेडियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सब जो फरमाइश भेजते हैं उन सबको आभार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह एंजॉय कीजिए और हिंदी गाने सुनते रहिए जो क्लासिक है, गोल्ड है इंडिया की, द गोल्ड ऑफ इंडिया, द ओल्ड सॉन्ग क्लासिक सॉन्ग्स, इसको सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। नमस्ते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने फाहून हिंदुस्तानी रेडियो को भारत से ही अपना पूरा संदेश भेजा। यहाँ पे जो हमारे 188 देशों में कार्यक्रम सुनाई देता है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो का, रेडियो के और इंटरनेट के माध्यम से सब लोग आपको पूर्ण रूप से अच्छे से याद भी करते हैं। बहुत सारे लोग आपको अभी भी गांधी सेंटर में आते हैं मिलने के लिए, कुछ लोगों को पता नहीं कि आप चली गई हैं भारत में, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी नीदरलैंड आएंगे और सब लोगों से फिर दोबारा से मिलेंगे। इसी के साथ आपका फाहून हिंदुस्तानी रेडियो में बहुत आभार और प्रकट धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: हमारी जो डायरेक्टर रही गांधी सेंटर में पहले, उनका अभी भारत से एक संदेश सब लोगों ने सुना, और उसी संदेश का जो हम उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप में जो बताया कि नीदरलैंड में भी उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कहीं दूसरे देश में, क्योंकि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो इतने अच्छे से कार्यक्रम और अपना जो कल्चर का कार्यक्रम करता है उससे किसी को भी महसूस नहीं होता जो फाहून हिंदुस्तानी रेडियो से जुड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार हम कार्यक्रम करते रहेंगे और इसी कार्यक्रम को आगे चलाते रहेंगे।
1: तो हम राजेंद्र जी वही गीत की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं।
0: हाँ, गीत की ओर बढ़ते हैं
1: जिसका नाम लागी छूटे ना।
0: लागी छूटे ना अब तो,
1: और लागी छूटे ना अब तो सनम।
0: तो जैसे ही हमारा ये गाना बजता है लागी छूटे ना अब तो सनम, तो हमें पता चल जाता है सब लोगों को कि हमारा 2 घंटा पूर्ण हो चुका है।
1: और आज की कार्यक्रम जैसे कि सुनने वालों आप सभी ने सुने कि अयोध्या का कनक भवन, और राजेंद्र जी ये बात भी हो जाता है अयोध्या में कोई एक व्यक्ति है जो कितने सालों कितने अवस्था को हुए थे ना।
0: हाँ, अयोध्या में तो भगवान राम का मंदिर है और उस मंदिर अभी तो बड़ा विशाल रूप में बन रहा है। तो पुराने जमाने से बहुत, जब त्रेता युग से वहाँ पे भगवान राम का मंदिर है, लेकिन अब बड़ा विशाल रूप में बन रहा है। उसके लिए सब लोगों ने पूरा दुनिया से सहयोग भी दिया और अभी बहुत सारे लोग अयोध्या देखने के लिए जाते हैं। जब मंदिर पूरा बन जाएगा तो और भी ज़्यादा लोग उसको देखने के लिए जाएंगे, और हमारे जो हॉलैंड के, सूरीनाम के, गयाना के, मॉरीशस के लोग हैं उन लोगों को तो ज़्यादा रुचि रहती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो हमारे सब भारतीय ही हैं और अपना कल्चर साथ लेके आए हैं, और भारत को तो लोग ऐसा मानते हैं कि जैसा उनका घर ही है। तो ज़रूर सब लोग उस तरफ चलेंगे। तो अब हम अपना कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ते हुए, बबली जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: नहीं, लागी छूटे ना वो चला देते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि
0: जी समय पे हमें सब काम करना चाहिए। समय, समय की बात, समय बड़ा बलवान, अर्जुन लूटा भीलों ने वही धनुष वही बाण, तो समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हम समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूला हुआ सब याद करता है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

दीवाना है तेरा। एक बार फिर कहूंगी कि कर्म अच्छा हो, कर्म अच्छा हो तो वही धर्म बन जाता है। ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। आप सभी फाउन रेडियो के सुनने वालों, हार्दिक से धन्यवाद साथ देने और सुनने के लिए। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

लागी छूटे ना अब तो सनम, छूटे तो ना लेकिन अब समय का हमारा जो समय हो जाता है वो तो छूट ही जाएगा, तो हमें समय पे अपना काम पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो फाहून हिंदुस्तानी के, जो कि इस प्रकार से हमें बड़े प्रेम से सुनते हैं अपना समय निकाल कर, और उनको कुछ ना कुछ जो संदेश हम लोग देते हैं उनके अपने जीवन में लाने से हो सकता है उनको कुछ फ़ायदा होता होगा, और उसको चाहे कंटिन्यू ऐसे ही हमको सुनते रहिए। तब तक के लिए अगली बार फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के हमारे कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता केमाई, बबली आसरा जी और राजेंद्र सिंह जी जो पनेल के पीछे, और भारत देश से प्रोफेसर निर्मला शर्मा जी जो अपने ओर से भारत से सहयोग दिए कार्यक्रम में। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, मैं हूँ आपका सेवक संजय। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

Listen up, yo. It's Valentine's Day.

0: हाँ हाँ ना खेला ना खेला।
1: तोरी शपथ मैं उमरिया की थोरी।
0: हाय हाय हाय हाय

बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: अगला गीत की ओर आओ, मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। सुपर सॉन्ग फन नहीं खाती नहीं खाते रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू मेरे महबूबा सॉन्ग दिनेश।

और तेरी चुनरिया दिल ले गई नहीं तक का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं, देखा तुझे तो क्या होता है क्या हो?

और पालू तुझे तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई खंती का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग, यहां से जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम हम चलाते।

और क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स वन नीखंत रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी कर देखता रहूं, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नई घंटक का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और ढड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते है। तो मूवी का नाम है कोबरा गर्ल, मैथ मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? है और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए ही, सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।
1: मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ। दोस्तों एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर

और जादू है और जादू फिल्म यानी कि यार नई खंतक का रोमांटिक सॉन्ग यहाँ से हम आप लोग को सुनाए हैं। और कुछ कन यानी कि गीतों की बहार प्रोग्राम यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि भरोसा इतना करो कि याद ऐसा करो कि हाथ ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतज़ार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसा करो कि नफरत ना हो, कुछ अलग ही करना है तो वफा करना मेरे दोस्त, मजबूरी के नाम लेकर बेवफा तो हर कोई करता है। तो हम चलते हैं, हमको तुम तो हो गया है क्या नैतिक लता जी और मोहम्मद रफी जी परमा श्री मोहम्मद रफी जी और यानी कि करोड़ों का दिल चुराने वाला, और वो कौन है, हमारे मुकेश जी है।

हमसे तो हमारे लयस्तरार से प्यार हो गया है, और अगर आपको भी प्यार होगा तो हमें जरूर बताना कि आपको क्या और किससे प्यार हुआ है। अगर यह हो सके तो हमसे बता देना कि कहते हैं काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायत दूर कर देते, काश वो मुझे सीने से लगाकर मेरी सारी शिकायतें दूर कर दे, मैं सिर्फ उनका हो जाऊं, मुझे वो इतना मजबूर कर दे कि हकीकत कहो उनकी ख्वाब लगता हूँ, हकीकत कहो उन्हें ख्वाब लगता हूँ, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, शिकवा करूँ तो उन्हें मजाक लगता है, कितने जिद्दत से हम उन्हें याद करते हैं, एक वो जिन्हें ये सब कुछ मजाक लगते हैं। अगर जो शादी करना है तो जॉनी को याद कर लेना और मेहनी लगा कर बढ़ जाना, कल हो ना हो और कल हो ना हो लेकिन जॉनी को याद कर लेना। फिल्म के नाम है कल हो न हो और मेहनी लगा करे मेरा तलाश

और माही कल हो ना, कल हो ना हो हमारे प्यारे जनता की कहते ही दर्द क्या होता है, ये जो दर्द जो है ना वो क्या होता है बताएंगे किसी रोज अपनी अपनी दिल के गजल जॉनी सुनाएंगे किसी रोज, दर्द क्या होता है जॉनी बताएंगे किसी रोज अपनी दिल के गजल सुनाएंगी किसी रोज, उन दिनों उन्हें दो परिंदों के खुली फिजाओं में हमारे होंगे तो लौट कर आएंगे एक रोज जरूर मेरी कब्र की मचान पर आईना लगा देना, मेरी कब्र के मचान पे और मेरी कब्र के मचान पर आईना लगा देना, उसे देखने की आखिरी उम्मीद अभी तक बाकी है हमारे दोस्त, तो हम चलते हैं मिलने की तुम कोशिश जरूर करना।

मूवी के नाम है दिल का क्या कसूर, और कुमार शानू आशा जी का ये गाया हुआ बेमिसाल लवली प्यार भरी गीत है।

उर्वरा तो और जरूर टूट जाता है कभी कभी वादा, जो लोग करते हैं वो टूट डालता है कि कहते हैं कोई गलती हो जाए तो दांत लिया करो, कोई गलती हो जाए तो डांट लिया करो, मगर यो रूठा ना करो हमसे, क्यों रूठा न करो हमसे, पागल सा पागल सा बच्चा हूँ मगर दिल का सच्चा हूँ, थोड़ा सा आवारा हूँ मगर तेरे ही दीवाना हूँ, कि कल हो न हो लेकिन जोनी का प्यार आपके साथ हो।

और बड़ी गुमान प्रीति वोमन कहो ना कल हो ना हो, शाहरुख का ये फिल्म है। और उसके बाद हम और आगे को अपना अपना प्रोग्राम को चलाते हैं, बनाते हैं, सुनाते हैं। हमारे यारो नखमाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और रेडियो के जरिए आपको हम और कुछ मिली जुली गीत से सेवा करते हैं कि कहते हैं सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, सुनो तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम जैसा और कोई नहीं है। बस इतनी सी है चाहत तुमसे, बस इतनी सी है चाहत तुमसे, कभी दूर जाओ तुम जोनी के नजरे से, तेरे बिना हो जीना ऐसा दिन कभी न आए मेरे यारो, न जाने मेरे ये दिल कहाँ खो गया, तुझे पहली दफा देखा और तेरी हो गया, और तेरे दर से दिल आबाद रहा। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना मूवी का नाम है, जिसमें शाहरुख खान ऋषि कपूर देविया भारती ने काम किया है, और एक दर्द भरी प्यार का सॉन्ग जो कुमार शानू आपको यहां से सुनाते हैं।

और तेरी दर से ये दिल आमाद हुआ हमारी दोस्तों। तो कहते हैं बिन तेरे अधूरा हूं मैं, तू मिल जाए तो जॉनी पूरा है। और कहते हैं दो चार दिन का इश्क हम नहीं किया करते हैं, और गए का इश्क हूँ यूं ही किसी से प्यार नहीं करते हैं। और गए का घर का और इश्क हूँ और को यूं ही किसी से प्यार नहीं करते हैं। तू मेरी सबसे खूबसूरत भूल है, तू मेरी सबसे सबसे खूबसूरत भूल है, तेरे हर खुशी और गम मुझसे कबूल है। अलका याग्निक और शंकर महादेवन की ओर हम चलते हैं हमारे यारों।

पूरे छम्मा ही छम्मा है, और छम्मा के बाद कौनची होता है, हम वो आशिक है जो स्कूल छोड़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक तो को नहीं, लेकिन स्कूल में हुआ आशिक को नहीं, तो मेरी जिंदगी के वो खुशी है जिसे मैंने अपनी दुआ में मांगा है। हमारे यारो, तो प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम है। हम यही कहते हैं हमारे यारो कि प्यार करना कोई छोटा बात नहीं है। कैसे छोड़ दूँ तुम्हें, प्यार करता हूँ तुमसे बस चाहत ही नहीं, और ज़रूरत हो तो मेरी, ज़रूरत हो तो मेरी, प्यार मोहब्बत आशिक ये सब बस अल्फाज ही थी, लेकिन जब तू मिली मुझे जिंदगी में इन अल्फाजों की मजा ही बदल गई। तो ये और है दोस्तों प्यार भरी नगमों का बहार प्रोग्राम, यहाँ से हम चलाते हैं कि दुख की शाम हो या हो सुख की सवारे, और सब कुछ अच्छा लगता है जब साथ हो तेरा। तो ये बात सच है कि तुझे मेरे प्यार पर यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे ये दिल है जो तेरे सिवा कहीं और नहीं होता है हमारे यारो। तो ये गीत है, फिल्म के नाम है अप्रैल फुल, और हम चलते हैं एक मस्त भरी, प्यार भरी, मोहब्बत भरी गीत की ओर।

और आ गली लग जा, फिल्म के नाम है अप्रैल फूल का ये, और ये प्यार भरी गीत फिल्म के नाम है यहूदी सॉन्ग, ये मेरा दीवाना है। दिलीप कुमार, मीना कुमारी इस फिल्म में काम किए, सिंगरेश मैथी मुकेश।

दीवानापन है। और ये है नाइटिंगेल मुकेश जी के आवाज में इस गीत को हमने चलाए है। हमारे दोस्तों परियारों क्या कहते हैं कि मेरे दिल की यही है दुआ, कभी दूर तुम ना जाना, तेरे बिन हो जीना, वो दिन कभी ना आए। तो हम सुनते हैं।

और मैं सोनिया और परमाशीन मोहम्मद रफी का और नितिल गेल लता जी का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं कि तेरी और मेरी रातों में बस इतना फर्क है, तेरी रातों को नाक बजता है और मेरी रातें रो कर

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है जिसमें तनाव।

प्रिय भाई बहनों, जब हम हिम्मत करते हैं तो ताकत बढ़ती है। जब हम जुड़े होते हैं तो एकता बढ़ती है। और जब हम स्नेह करते हैं तो प्यार बढ़ता है। और जब हम देते हैं तो

भाई बहनों, आपका अच्छा व्यवहार आपके रिश्ते को निर्धारित करता है। यदि दुनिया में कोई वास्तविक चुंबक है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, तो वह आपका प्यार और आपका व्यवहार है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये आपकी संपत्ति है या धन है। नहीं दोस्तों, नहीं, ये आपकी संपत्ति या कुछ और नहीं है, ये सिर्फ आपका प्यार और आपका व्यवहार है। आपका व्यवहार है, ये आप अपनी जीवन में लागू कीजिए मित्रों, लागू कीजिए।

दोस्तों, गलतियां, असफलताएं, अपमान, निराशा और अस्वीकृतियां प्रगति वृद्धि का हिस्सा है। इन पांच चीजों का सामना किए बिना किसी ने कभी भी कुछ भी मूल्यवान हासिल नहीं किया है। मित्रों, मुझे क्षमा करना, तो क्या आप कोई विशेष इंसान हो जो ये पांच चीजों का सामना किए बिना सब कुछ हासिल कर लेंगे? नहीं, नहीं, आपको भी इस चक्की में जाना पड़ेगा। और जब आप इससे बाहर निकलते हैं, तब आप एक वास्तविक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। मित्रों, ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना।

भाई बहनों, खूबसूरत दिन तब आता है जब आप जागते हैं और पाते हैं कि जीवन अभी भी आपकी दुनिया का रंग है, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं और आपको कभी नहीं भूलते हैं, और इसका अनुभव केवल तभी कर सकते हैं जब आप वास्तव में दूसरों के प्रति मधुर और दयालु हो। यह आप पर अच्छा लगेगा, ये आप पर अच्छा लगेगा। इसलिए बिना किसी घमंड के हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें मित्रों, बिना घमंड के।

शुक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज सुबह के कार्यक्रम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी जो बीमार है, लाचार है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। सभी जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत बहुत सा

जो अपने काम के तैयारी में हैं, अभी निकलने वाले हैं, तो ये मत भूलना गांधी जी का संदेश कि मेरा जो देश हमारे लिए क्या कर सकता है इस पे चिंता मत करना। चिंता ये करना कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। जो अभी स्कूल के लिए यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ना बढ़ेंगे तो उनको ये कहूँगा कि सरस्वती माता को भूलना मत। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ सरस्वती जो बुद्धि और ज्ञान का देने वाले हैं, जो हमारे देश में सफर से आए हैं, तो यही कहूंगा कि आपको हार्दिक से स्वागत है हमारे सुंदर सा देश में। और जो सफर पे जाने वाले हैं यानी कि कहीं और जाने वाले हैं, तो उनको फैन फकांसी तू एंस किया जाता है। जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है यानी कि एक नया परिवार आया है, उनको बहुत बहुत सा बधाई देना चाहता हूँ।

मैं हूं आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं। और खास करके पहला भाग में शंकर महादेवा जी की आवाज में आप सुनेंगे सुंदर सुंदर भजनों। एक दंताए वक्र तुंडाए, ये गीत से हम शुरू करते हैं।

शंकर महादेवा जी के आवाज़ में हम सब ये सुंदर सा गीत सुना। सुनवाना एक ऐसा कलाकार जो 7000 से ज़्यादा गीतों को गा चुके हैं, अलग अलग भाषाएं में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने जीवन में शायद इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा था पर जाकर के कलाकार बने और इतना सुंदर सुंदर गीतों को गाए। कहते हैं

कहते हैं कि संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आई जाते हैं। आज अपना एक दिन बनाइए जहां आप शायद संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें जो कभी ना कभी आप सुने होंगे शायद आज काम में आई जाए।

सुनो लो, हम शंकर महादेवा जी का जो शिव तांडव स्तोत्रम है उनके आवाज में सुनेंगे।

शिव तांडव स्तोत्रम जो रावण रची, शिव तांडव स्तोत्रम जो जाकर के शंकर महादेवा जी की आवाज में हम सब सुने सुने वाला। कहते हैं कि अजीब से रिश्ता है मेरा ऊपर वाले से, कहते हैं कि अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ, जब भी मुसीबत आती है ना जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। मैं उसके सामने सिर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सिर उठा देता है।

जीते जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, इसे गुस्सा, पछतावा, शिकायत और चिंता करने में बर्बाद ना करे। हमेशा प्रसन्न और सकारात्मा रहे। जरूरी इन बातों पे ध्यान देना सुनने वालों कि जीवन बहुत छोटा है, गुस्सा, पछतावा और शिकायत कहते हैं कि चिंता करने में बर्बाद ना करे। हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक रहे। सुनने वालों, हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे और शंकर महादेवा जी कृष्ण महामंत्र के और संदेश हम सबको सुनाने वाले हैं।

जी रहे हैं सरकार तेरे मेहरबानियां में, जी रहे सरकार तेरे मेहरबानियां में, पल रहे परिवार कान्हा तेरे पहरेदारी में।

कहते हैं कि यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, लिख लेना मेरा नाम तेरी खातिरदारी में।

किसी ने अच्छा कहा है। दिए हुए जुबान और काम आया इंसान, ये दो चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसे जुबान दिए हुए हो तो ये बात को ध्यान देना चाहिए, और जो तुम्हारे काम आए हैं ऐसा इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये दो चीज है कभी नहीं भूलना चाहिए।

जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम, जय हनुमान। शंकर महादेवा जी के आवाज में हम सब हनुमान चालीसा का सुने सुने वालों, आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए

और ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिंदगी की राह चुनते समय अपने माता पिता के राय अवश्य ले, क्योंकि क्योंकि कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र नहीं होती है जितनी आपकी उम्र नहीं होती है उतना उनका अनुभव होता है। तो सुनने वालों जरूर इस बात पे ध्यान दे कि जिंदगी के राह चुनते समय अपने माता पिता की राय अवश्य ले, क्योंकि जितनी आपकी उम्र नहीं होती है उतना उनका अनुभव होता है।

संदेश जरूर आपके लिए रखना चाहूँगा कि उम्मीद हमारी वो शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रसन्न बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब है।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए माता पिता के साथ बिताए हुए पल, माता पिता के साथ बिताए हुए पल संभाल कर रखना, क्योंकि ये पल आपको याद तो आएंगे पर वापस नहीं आएंगे। तो जरूर इस बात पे ध्यान देते हुए आज समय निकालिए अपने माता या पिता के अंतर्गत। एक संत ने अच्छा ही कहा है कि चाहे आप सुबह पूजा मत करो पर अपने माता पिता के साथ बिताए हुए पल वो पूजा के समान हो जाता है।

मैं हूं आपका सेवक संजय, और आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय ये कार्यक्रम को सुनते हैं, हार्दिक से स्वागत किया जाता है। जो इंटरनेट द्वारा अपने घर पे सुनते हैं, बहुत बहुत सा और अभिनंदन। जो अपने मोबाइल से सुनते हैं, उन्हें भी इंटरनेट द्वारा हार्दिक से अभिनंदन। और जो इस समय अपने गाड़ी से सफर कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत सा और शुभ दिवस। कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगे। कहते हैं अपने माता पिता, जो माता पिता के चरणों में स्वर्ग कहलाते हैं,

माता पिता को सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं और किसी ने अच्छे कहा है कि माता पिता के बात सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाती है और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं।

पिता के लिए उनके बच्चे भी सब दिन कितना प्यारे होते हैं, ये तो हम मेरा राजा मेरा लाल ये सुंदर सा गीत से पता चलेगा।

सुनो, आपके लिए हम अपने माता पिता पे और जरूर ध्यान देते हुए माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है।

तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है माँ। ये सुंदर सा गीत हम सुने और सुनने वालों आज ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि पाप और पुण्य क्या है, मुझे पता नहीं है कि पाप और पुण्य क्या है। बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी हुए वह पुण्य है।

घर से जब शिशु जन्म लेता है तो माता पिता कितना खुश होता है, उस अंतर्गत में हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे।

सूरज कहो या चंदा, ये सुंदर सा गीत एक फूल दो माली से निकाला गया फिल्म जो मन्ना दे के आवाज में और हम सब सुने। तो आपको इस बात को भी पता चल गया होगा कि जब हमारा जन्म होते हैं तो माता पिता कितना खुश होते हैं, समस्त परिवार कितना खुश होते हैं और प्रकृति क्या करते हैं। जैसे पंछियों अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उड़ने की कला सिखाते हैं। इसी तरह से हमारे माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं और समय आने पे हम अपना अपना घर बसा लेते हैं ना। तो हम शायद इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि हमारे भाग्य, हमारे स्वभाव और हमारे रूप, ये तीन चीजें है जो हम सबकी अलग अलग होती है। कि हमारे भाग्य, हमारे स्वभाव, हमारे रूप, यही वो तीन चीजें है जो हम सबकी अलग अलग होती है।

औलाद वालों फूलो फलो, कहते हैं कि ना सुख खरीदने पता हूँ ना दुख बेचने पता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने निकल जाता हूँ।

जरूर इन गीतों को सुन करके आज समय जरूर निकालना, अपने माता पिता के लिए, कि वो नहीं होते तो हम कैसे होते।

ये सुंदर सा गीत जो हम सुने कि पप्पा जल्दी आ जाना, और ज्यादा ख्वाहिशें नहीं बस जिंदगी का अगला लम्हा पिछले से बेहतर हो काफी है।

बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रहना। यही संदेश होते हैं हमारे माता पिता के।

जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसा है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें बहुत स्नेह कर रखिए। यहाँ तक जो मैं आपके साथ जुड़े रहे, आशा रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। और हमारे कार्यक्रम जो आगे हमारे कोलेखा साथी लेकर बढ़ाएंगे।

0: घोर भय पन घट पर लता जी के लाइफ अपरेद यहाँ से आपके लिए पेश किया गया। मेरी आवाज के सुनने वालों, आपको यहाँ से रफी जी की आवाज में।
1: इसके बाद मैं फिर एक बार कृष्णा मुखर्जी से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आ जाएं। और अब पेश खिदमत है एक दो गाना जिसकी फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। गाने के बोल हैं, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, वगैरह वगैरह। लीजिए, मुलायजा कीजिए।

0: कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा, सदियों तक रहेगा। ये रफी जी के प्यार जो है, हाँ, कई पीढ़ियों तक ये जरूर से आबाद रहेगा, आबाद रहेगा। आपके लिए पेश किया जाता है रफी लता के लाइव परफॉर्मेंस। कहते कि हमसे दूर जा पाओगे कैसे, हमसे दूर जा पाओगे कैसे मेरे दोस्तों, दिल से हमको भुला पाओगे कैसे। हम तो वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे आप कैसे, ये तो बता।
1: मैं ये कहूँगी कि हमारे जो पुराने कुछ स्टार्स थे उनके लिए गाने में मुझे भी बहुत खुशी होती थी, क्योंकि मैं जानती थी इसके ऊपर जो एक्टिंग होगी वो बहुत सही होगी। उसमें से एक जया जी हैं।

ये कॉन्सर्ट दिया गया है 1997 में। अजीब दास्ता है ये लता जी के आवाज में। द बेस्ट म्यूजिक ऑफ यू फेवरेट फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। दुनिया उसी को सलाम करते हैं, दुनिया उसी को सलाम करते हैं जो अपने लक्ष्य पर, जो अपने लक्ष्य को प्रणाम करते हैं। और जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की हर रचना सर्व उत्तम है। ईश्वर की हर रचना सर्व उत्तम है। एलक पर्सन इज यूनिक।

فيلم كان عام Love in Shimla. فيلم كان عام Love in Shimla 1966 پکچر رائز کیا گیا. فيلم رفی جی کے آواز میں یہاں سے ہم نے مل کر سرون کیے کہ دل تھام چلے ہم. कहते हैं कि बहुत नन्ही सी परिभाषा है प्रेम की, बहुत नन्ही सी परिभाषा है प्रेम की, मैं शब्द तू अर्थ तुम बिन मैं व्यर्थ. जिंदगी है तो जी ले, जिंदगी है तो जी लो, वरना गुजर जाएगी. जिंदगी है तो जी लो वरना गुजर जाएगी, ये जिंदगी है जीना सीखिए. ये जिंदगी है जो जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती. जिंदगी है तो जी लो वरना गुजर जाएगी. जिंदगी की कहानी बस इतनी से है, जिंदगी की कहानी बस इतनी से है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है, कि इंसान पल भर में याद बन जाता है. जिंदगी है तो जी लो, जिंदगी है तो जी लो, वरना गुजर जाएगी.

0: नए न बरसे और साथ में आएगा लता जी के मधुर आवाज में आपके लिए पेश किया गया है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं, कहाँ पर लेकर चलते हैं? हाँ, फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से सुनेंगे हम कि प्यार क्या है, लव क्या है। LOVE उसका मतलब क्या है, जरा हम सुने मिलकर।
1: L
2: O
1: V
2: E

जिसको LOV नहीं आता है वो कहते हैं कि वो बोरिंग है, पर ऐसा नहीं है। प्यार, प्यार से तो आप है, प्यार से तो हम है, प्यार से ये सारा संसार है, है ना। और कहते हैं कि जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, आप सुनिए जरूर से, इसे थोड़ा गौर से सुनिए, कि जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता है वो दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनने की कोशिश करते हैं। जी मेरे दोस्तों, आपने ठीक सुना कि जिस इंसान के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता वो दूसरों में कमियां निकाल कर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है।

लुट गई मेरे प्यार की नगरी, रफ़ी जी के लाइव परफॉर्मेंस आपके लिए पेश किया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों,

0: What an ethal, what an ethal. Oh my god.
1: हाँ हाँ,
0: रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनते ही। क्या आलाप है, क्या अंतरा, क्या मुखरा, कितने सुंदरता से निभाई है रफी साहब जी ने। Ja, lieve luisteraars, hier kunt u terecht. Hier kunt u terecht voor al uw vermaais, reclameberichten en anders wat u wenst te horen. Neem gerust contact op. Je Aapka, har ik radio he. Radio van hon, jisper aap tjoen he. Tere intezaar me bas. Tere intezaar me kap se udaas baithe he. तेरे इंतजार में कब से उदास बैठे हैं, तेरे दीदार में आंखें बिछाए बैठे हैं। तू एक नज़र हमको देख ले, तू एक नज़र हमको देख ले, इसी आस में, इसी आस में कब से बेकरार बैठे हैं।

लो क्या खाओगे जलेबी, आ तो मान गए, आखिरी में मान गए, जो दोगे वही खा लेंगे, क्या करेंगे। कभी कभी हम बेचारे लाचार हो जाते हैं। एक सवाल है आपसे, व्हाट इज योर ग्रोस्ट प्रेस्टेशन टॉट नीतू? व्हाट इज योर ग्रोस्ट प्रेस्टेशन टॉट नीतू? एक सुंदर सा शायरी आपके लिए, और वो ऐसा है कि मेरे दिल की हर धड़कन, हाँ हाँ, कि मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरी हर दुआ प्रार्थना तुम्हारे मुस्कुराहट के लिए है, तुम्हारी हर अदा मेरे दिल को चुराने के लिए है, अब तो मेरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार के लिए ही है। इस गाने के बगैर मैं सोचती हूँ कि प्रोग्राम अधूरा रहेगा, तो अधूरा नहीं होना चाहिए, तो इस गीत से ज़रूर से पूरा हो जाएगा, और वो है रफ़ी जी के लाइफ इन सूरीनाम की आयाया सुका सुका आयाया सुकु सुकु। क्योंकि सूरीनाम में ये लाइव शो दी थी रफ़ी जी ने, तो इस गीत में थोड़ा से सूरीनाम के इंस्ट्रूमेंटल भी धर दिया गया है।

जी हाँ, हंसते हंसाते यहाँ से आपके लिए। जी मेरे प्यारे सुनने वालों, मोहम्मद रफी लाइव इन सुरीनाम परमारिबो इन मैत्रियंस 1963 में आप जो थे उन दिनों में तो आपने जरूर से देखे होंगे। और ये भी था द पारल थिएटर, द पारल में परमारिबो सुरीनाम इन 1963। यहाँ से आपके लिए यादें ताज़ा किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

हे मनुष्य, जो भी सच्चे मन से मुझे याद करते हैं उन सभी भक्तों में सदैव वास करता हूं मैं, और उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता हूं।

अंधेरा हुआ दूर रात के साथ, अंधेरा हुआ दूर रात के साथ, नई सुबह आई, नई सुबह आई बधाई के साथ। आंखें खोल देखो, आंखें खोलो देखो, गणेश की शुभकामनाएं साथ ले।

परिस्थिति जो भी हो, परिस्थिति जो भी हो, बस चलते ही रहना। सुना दे हमको महेंद्र कपूर जी और मना दे और महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में सुने कि जीवन चलने का नाम, चलते ही रहना, चलना ही जिंदगी है, रुकना के नाम, रुकने का नाम मौत। फिल्म शोर नेखन तीन तुए यन सेफ के ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल दिया गया, चला दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों।

नदी जी की आवाज़ में हमने यहाँ से श्रवण की है कि ओ नदिया चले चले रे धारा, फिल्म का नाम हम देखे तो फिल्म का नाम सफ़र है, सफ़र है फिल्म का नाम। बचपन का यार, बचपन का यार, बुढ़ापा का बुखार हमेशा दिल में रहता है। बचपन का यार, बुढ़ापे बुढ़ापे का बुखार हमेशा दिल में रहते हैं। दुश्मन का चांटा, दुश्मन का चांटा सीधे दिल में चुभता है। नोटों के पेटी घर में बेटी किस्मत से मिलती है, नोटों के पेटी घर में बेटी किस्मत से मिलती है। माँ की डांट झापड़, बाप के थप्पड़ जीवन की राह सिखाते हैं। नाना नानी का दुलार, दादा दादी का प्यार हमेशा हमेशा याद आएंगे। उम्मीद, उम्मीद जब जंग लगी नाकामी संग लगी बर्बाद कर देते हैं। और जुए की आदत, जुए की आदत शराब की लत कहीं का नहीं छोड़ते। इसी के साथ हम आपसे कहते कि खुश रहो सलामत रहो, जी भर मुस्कुराओ। खुश रहो सलामत रहो, जी भर मुस्कुराओ। पत्थरों का नहीं बल्कि फूलों का घर बनाओ। प्रेम से सजाओ, प्यार से पेश आओ।

इतने सुंदर से फरमा दी है महेंद्र कपूर जी ने, कहती है कि ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। एक बुजुर्ग ने सच कहा है, अब वो बुजुर्ग ने क्या कहा है और क्या ऐसी सच्चाई है, तो यहाँ से हम मिलकर सुनते हैं आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। एक बुजुर्ग ने सच कहा है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर दुनिया भर की माँ अच्छी है तो फिर सास में बुराई कैसे, और अगर बेटी के दुख से दिल तहलता है तो फिर बहू के दुख में सुकून कैसा। अगर ननद का घर में आना भाभी को चुभता है। ये बुजुर्ग ने कहा है, एक बुजुर्ग ने कहा है कि अगर ननद का घर में आना भाभी को, भाभी यानी कि भौजाई को चुभता है, तो भाभी का मायके जाना सही कैसे हमारी माँ बहनों को थोड़ा सा सोचना होगा, ज़रूर से सोचो, ये मैं भी कहती हूँ।

ये सुंदर सा गीत कि संसार है एक नदिया फिल्म रफ्तार से निकाला गया है और ये पिक्चराइज किया गया है 1955 तक में। और इस वक्त में हमने सुने अनुराधा पौडवाल और बबला मेहता जी की आवाज़ में। एक जोक आपसे बताना चाहती हूँ कि एक दोस्त ने पूछा अपना एक दूसरा दोस्त से, दोस्त ने पूछा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में। एक दोस्त ने दूसरा दोस्त से पूछा कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, तो वो दोस्त ने कहा बस कुछ खास नहीं, बड़ों का आशीर्वाद, पटनी की ताने, दर्द भरी गाने, बाकी भगवान जाने। यहाँ पे एक और सा एक छोटा सा जोक आपके लिए कि सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, जो अकेले रहते हैं वो दुखी, जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो भी दुखी, शादीशुदा भी दुखी, फिर ज़िंदगी में मज़ा आखिर ले कौन रहा है। ज़िंदगी का मज़ा आखिर कौन ले रहा है जब सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाला दुखी, शादीशुदा वाला दुखी। तो सवाल उठता है कि आखिर में इस ज़िंदगी का मज़ा कौन ले रहा है।

बेशक बीते हुए लम्हों की कसक हमेशा साथ रहेगी। सुना दी हमको महेंद्र कपूर जी, महेंद्र कपूर जी फिर जो गीत ने सुनाई और फिल्म का नाम है, हाँ आप तो जानते ही होंगे, आप तो जान ही गए होंगे फिल्म का नाम। अगर नहीं जाने हो तो बता देते, फिल्म का नाम निकाह। निकाह ने कंतीन तो इन तख तक में ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। दोस्ती होती है वन टाइम, एक ही बार दोस्ती होते हैं वन टाइम, हमें निभाने पड़ते हैं उसे फुल टाइम। याद किया करो एनी टाइम, याद किया करो एनी टाइम, तुम खुश रहो ऑल टाइम। यही दुआ प्रार्थना है, यही दुआ प्रार्थना है लाइफ टाइम। यहां से आपके लिए एक छोटा मोटा वाला जोक बता देते हैं, आप मेरे साथ जरूर से कल्पना करें कि एक व्यक्ति खड़े खड़े सब्जी वाले यानी जो खुरंते बेचते हैं, सब्जी वाले की काफी देर से सब्जी वाला काफी देर से सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था। सब्जी वाला एक व्यक्ति जो भाजी बेचते हैं, सब्जी वाला यानी उसे सब्जी कहते हैं, भाजी को सब्जी भी कहते हैं, कि सब्जी वाला काफी देर से सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था। अब पानी कब छिड़कता है, जब सब्जी जो ने पत्ता जो है वो भाजी जो है वो पत्ते जो कुमला ले रखते हैं तो उस पर पानी छिड़कते हैं ताकि वो थोड़ा सा हरा भरा दिखाए। तो एक सब्जी वाला काफ़ी देर से सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था और एक ग्राहक बोला, कस्टमर वो बोला, भैया भिंडी को जब होश आएगा तो 1 किलो दे दो।

यहाँ से हम एक बार फिर सुनेंगे फिल्म निकाह से। इस बार है महेंद्र कपूर जी, सलमा आगा, किशोर कुमार और आशा भोसले जी।

0: नीचा।
1: ठहरू मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों बैठे खाएंगे। हाँ
2: चिराग सीट, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है।
3: हाँ ले जाओ, ले जाओ।
2: थैंक यू सर।

आगे भी जाने न तू और पीछे भी जाने न तू, हम एक पल की कुछ नहीं जानते। आशा भोसले जी की आवाज़ में फिल्म का नाम वक्त, जो निकटतम फैफस दस्तक में पिक्चराइज किया गया है। आपसे एक गहरी बात यहाँ से करनी चाहती हूँ और वो ये है कि किसी की याद आए तो झट से फ़ोन कर लिया, किसी की याद आए तो झट से फ़ोन कर लीजिएगा। बात ना भी हो तो एक मैसेज ज़रूर से कीजिएगा। अगर गुस्सा आए तो चार बातें कहकर और उतार दीजिए। गुस्सा आए तो चार बातें कहकर और उतार दीजिए। प्यार आए तो उसे गले लगा लीजिए। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ज़िंदगी कभी कभी दूसरा मौका

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభా నిర్విధినం కురుమే దేవ సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రరు మిల్నే కా మౌకా నహీ మిల్ పా రహా అత శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూ ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసీ నా కిసీ రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠతా కో హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూ ఫాహన్ హిందుస్తానీ రేడియో కే సభీ సునే వాలో కో హార్దిక్ సే అభినందన్ కర్తే హై ఔర్ యహాన్ సే జో హమ్ సబ్ ఉపస్థిత్ హో గయే స్టూడియో మే తో శాంతా జీ ఔర్ కొలేఖా సాథీ బబ్లీ జీ భీ ఔర్ పనీల్ కే పీఛే హమారే భాయ్ రాజేందర్ జీ హై సభీ అప్నా అప్నా ఎంట్రీ దేతే హై ఫిర్ ఉస్కే బాద్ మే హమ్ విషయ జో ఆజ్ కా బడే ధమాకేదార్ హై ఉస్కే ఔర్ బడేంగే తో దోస్తో आप पहले शांता जी के सुन रहे हैं, फिर बबली जी को, फिर उसके बाद में राजेंद्र जी को।
1: रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम में या खुशी में साथ दे, रिश्ता वो है जो अपनापन का एहसास दे। सभी का शांता के प्यार भरी राम राम प्रणाम इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
2: चुप रहना और अपने काम में लगे रहना भी एक कला है। इस संसार में जिसको भी ये आ गया वो बिना किसी आवाज़ के बुलंदियों पर पहुंच गया। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
3: सबने अपना अपना शेर तो बड़ी जोर शोर से सुनाया, किसी ने चुप रहने की बात कही, किसी ने रूबरू रूब मिलने की बात करी, शांता जी ने अपना सुनाया, लेकिन हम क्या सुनाएं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो कि हम आगे सुनाएंगे सबके लिए नमस्कार। और इसी प्रकार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुनते रहिए, कुछ ना कुछ आज हमारा जो विषय है कश्मीर के ऊपर है। और
0: दोस्तों, कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले हम हर सप्ताह की तरह, जैसे कि जिसका मन अभी उदास है, जो अभी अभी रेडियो को ऑन किए है और जो इस समय ये कार्यक्रम के सुनने के लिए, क्योंकि कितने लोग ये कार्यक्रम अन्य देशों में भी सुनते हैं, वहाँ शायद समय कुछ और होगा, तो सभी के लिए पहले हरिओम सरन जी ने सुंदर रूप से अपने वाणी से और जाकर के वो गीत से हम सबको और हम सब के लिए गाकर छोड़ गए हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े। तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम वो ही गीत चलाते हैं पहले, फिर आज का विषय जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत में काफी संदेश है, पर और भी संदेश है दोस्तों, आप सुनते रहना। हम पहले वही गीत की ओर बढ़ रहे हैं जो हम सभी हर सप्ताह की तरह, तेरा राम जी करे।

0: तो दोस्तों, अभी हम सब आगे बढ़ने वाले हैं ये विषय के लेकर, पर ये विषय आज जो हमारे विशेषज्ञ है ना, तो विशेषज्ञों ने कुछ और भी संदेश रखे हुए। राजेंद्र जी, इसके बारे में आप कुछ पहले सुनाओ, तो फिर हम सब जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेंगे।
1: हाँ, जो आज का विषय है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर है वो एक धरती का स्वर्ग कहा जाता है।
0: धरती का स्वर्ग।
1: हाँ, और जब धरती का स्वर्ग की बात आती है तो कश्मीर में क्या नहीं होता है, फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट सारे होते हैं। केसर जो वहाँ का बहुत ही फेमस और पूरी दुनिया में नंबर वन का जो केसर कहते हैं वो कश्मीर में ही होता है।
0: महाराज इंद्र जी, ये बात है कि केसर आप कह रहे हो, पर केसर बोले तो हम लोग यहाँ कैसे हम जानते हैं शांता, हॉलैंड
1: में सैफरान,
0: सफरान,
2: सफरान,
0: सफरान उसे कहते हैं। दुनिया के वर्ल्ड सबसे ऊंचे क्वालिटी के वही,
1: सबसे ऊंची क्वालिटी का वही होते हैं। वहाँ के अखरोट, वहाँ का बादाम, वहाँ का नारंगी, मौसमी, सब चीज बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ऊंचाई वाला स्थान है और कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए सब चीज़ें बड़ी स्वादिष्ट वहाँ होती है। उसी कश्मीर के बारे में जब हम आज आगे की बात करेंगे कि वहाँ के राजा जो आखिरी राजा हुए,
0: बहुत अच्छा होता,
1: क्योंकि राजा करण सिंह, जब राजा हरि सिंह वहाँ के महाराजा थे तो राजा करण सिंह भी ऑलरेडी, उनका राजा करण सिंह की जय बोला जाता था उस समय। इसके बाद देश स्वतंत्र हो गया और फिर सब राजे रजवाड़े सब एक उसमें आ गए, भारत में सब विलीन हो गए। इसी प्रकार का आज हमारा कार्यक्रम जो होने वाला है कश्मीर के बारे में और राजा हरि सिंह के बारे में, उस पर प्रकाश डालेंगे।
0: तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम पहले थोड़ा से उस ओर बढ़े, क्योंकि शांता ने पिटारा भर करके और गीतों को लेकर आए हैं, और हमारे सुनने वालों भी इस बात को जब कहीं मिलते हैं तो वो कहते हैं शांता जो अपना पिटारा लेकर आते हैं, भला बताइए वो कैसा चीज़ है, वो क्या है। तो सुनने वालों, ये बात है कि जरूर एक ना एक दिन ये अवसर मिलेगा आपको शांता का पिटारा से और देखने के, और तथा यानी कि वो कहने की तात्पर्य ये है जो अपना गीतों जो शांता जी लेकर हम सबके लिए खोज खोज करके इकट्ठा करके यहाँ उपस्थित होते हैं स्टूडियो में। तो क्यों ना पहले हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर अभी आज ये तेईमा जो है विषय जो है जम्मू कश्मीर, उस पे जरूर चर्चा किया जाएगा। पर राजेंद्र जी, हमारे सुनने वालों तथा हमारे विशेषज्ञों खास करके संदेश कुछ और भी रखे हैं, तो वो भी सुनाना पड़ेगा। पहले हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
1: जो गीत के बोल है वो है, कश्मीर की वादी में मेरी माँ का द्वारा,
0: कश्मीर के वादी में मेरी माँ का
1: द्वारा
0: द्वारा। चलो सुना देते हैं।

0: कश्मीर की वादी में शेरों वाली माँ का द्वारा है। लखबीर सिंह लखा जी ने जो भजन गाया है बहुत ही सुप्रसिद्ध एकदम, उसमें बहुत ही प्रकार से लोगों को सराहनीय हो जाता है, सबको पसंद आता है, यानी सबको पसंद आता है इस प्रकार का जो लखबीर सिंह लखा ने भजन गाया। और कश्मीर का तो होना भी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का जो धरती का स्वर्ग कश्मीर है उसके बारे में तो हर किसी ने अलग अलग प्रकार से अपना बयां किया है। तो इसी विषय में हमारा कार्यक्रम कश्मीर के विषय में जो आज का रहने वाला है, होने वाला है, कश्मीर की जो 10 बातें हैं।
1: राजेंद्र जी, जैसे कि आप कह रहे कश्मीर के बारे में हम सब आज विशेष बातें रखने वाले हैं, पर पहले राजेंद्र जी कुछ बातें और आए हैं और उन्हें तो पहले हम सब रख दे, ताकि हमारे सुनने वालों इस बात को भूले ना और इस बात को जानना बहुत क्या कहते हैं जरूरी है। अब जैसे कि राजेंद्र जी यहाँ बताया जाता है कि फलों से सीख जो हम सबको मिलता है ना, फल से, तो फलों से जो सीख हम सबको मिलता है कि जैसे कि गुजाबा, शांता जी गुजाबा पता ना क्या?
2: गुजाबा मेरे को पता है क्या है, खुयाफा,
1: उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अमरूद ना,
0: तो उसको बोल अंग्रेजी में गुआवा बोलते हैं, हिंदी में अमरूद,
1: ऐसा। तो फलों से सीख जो हम सबको मिलते हैं कि नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाते हैं ना उसे। अब कभी कभी तरबूजा बाजार से लावो, होलांत एक देश है जहां पर तरबूजा यानी कि वाटर मेलन ना कि हर समय मिलता है। सूरीनाम एक देश है जहां पर बस ख्रोतफकांसी में ना मिलता है
2: गर्मी के अनुसार।
1: और पर होलांत एक देश है जहाँ पर हर समय आपको और तरबूजा कोई भी फ्रूट कोई भी अपेगो एप्पल जैसे भाई
2: लगातार मिलते हैं।
1: हाँ, लगातार हमारे घर पे पेड़ से जो सेब एप्पल होते हैं ना, तो अगोरते हैं कि अब फूल ले लिया है, धीरे धीरे फूल से अब जब फल बन गया है और उसका तुराई जुलाई अगस्त में होता है कि हम सब उसे तोड़ पाते हैं ना। पर होलांत एक देश है यहाँ हर समय सब प्रकार के और फ्रूट मिल जाता है। पर कहने के तात्पर्य यह है नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाते हैं फलों से, फलों का ना, कच्चा आम जैसे भैल और इस प्रकार के अनेकों और फलों में नमक लगा दो।
0: नहीं, जैसे नमक आम में न लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नमक अमरूद में और जामुन में काला नमक, अमरूद में काला नमक लगाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है, और जैसे केले में भी थोड़ा सा नमक लगाने से उसको अच्छा हो जाता है। इस प्रकार आम में नमक नहीं डालो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आम वैसे ही मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है
1: आम जो फलों का राजा। पर राजेंद्र जी ये भी बात है, आम जो अंदर से यानी कि रंग उनका और क्या कहते हैं औरायों को, कैसे कहते हैं,
0: ऑरेंज
1: भगवा
2: भगवा,
1: हाँ जो रहे तो जान ले ये मीठा मीठा है। पर कभी कभी कोई कोई आम अपना मनमानी करते हैं तो हरा ही रह जाता है, तो उसे हम नमक लगा कर खा लेते हैं ना।
0: तो जो हरा रहता है वो कच्चा रहता है,
1: हाँ वो अपना मनमानी करते हैं,
0: फिर उसका अचार भी बना सके,
1: अचार भी बना सकते। पर कहने के तात्पर्य ये है,
2: लोटस बनाता
1: है, लोटस शांता जी बनाते थे लोटस, आपको पता क्या?
0: हाँ हम जानी ला,
1: तो उसमें क्या डालते थे शांता जी, कैसे बनाते थे उसे?
2: नीमक मर्चा कसरीपो,
1: नीमक मर्चा और कसरीपो के साथ तो बहुत स्वादिष्ट हो जाता था, और उन्हें बना करके घाम में भी रखा जाता
2: था, थोड़ा सा घाम में धर देते फिर खाओ ना,
1: तो फिर खाओ ना। तो ये संदेश है कि फलों से सीखिए, नमक लगाने पर भी स्वाद बढ़ जाता है, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों। और आज का संदेश जो हमारे है, हमारा संदेश जो है कि जैसे कि जीवन में ये चाहते हैं कि हमारे घर से एक बेटा बेटी जन्म लेवे और वही हमारे बुढ़ापा का लाठी बनता ना। शांता जी इसके बारे में आपके क्या ख्याल?
2: बुढ़ापा का लाठी बच्चे
1: जी,
2: बच्चे आज आप तो ऐसे बोले जेके बच्चे ना, और जेके बच्चे नहीं तो
1: तो बुढ़ापा का लाठी नहीं रहेगा,
2: तो बुढ़ापा का लाठी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा?
1: वही तो यही बात है। बबली जी आप जरा बताइए कि उसके बारे में हम सबको क्या संदेश लेकर आए आज?
3: हाँ जी जरूर, बुढ़ापे का सहारा कौन होता है और कैसे? बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं बहू होती है। जैसे कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती है, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा या बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। यह बात सच भी है क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिंदगी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर की बुढ़ापे की लाठी।
1: बहू क्या बन जाते हैं? बूढ़े सास ससुर की लाठी,
3: बुढ़ापे की लाठी,
1: बुढ़ापे की लाठी।
3: जी हाँ, मेरा तो यही मानना है वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है, कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम में नाश्ते में क्या बनाना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना है। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाए तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर की दूरी हिल जाती है, परंतु यदि बेटा 15 दिन की यात्रा पर भी चला जाए तो भी बहू के भरोसे घर सुचारू रूप से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वह चाय नाश्ता से लेकर खाने के लिए छटपटा जाएंगे, कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता क्योंकि बेटे के पास समय नहीं, और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे यह मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारी ख़त्म। जैसे माँ बाबूजी को खाना खाए, चाय पिए, नाश्ता किए, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वह क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। यह लगभग सभी घरों की कहानी है। मैंने तो ऐसी बहुएं देखी हैं जिसने अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा की, इसलिए मेरा मानना है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। अपनी बहू में सिर्फ कमियां मत ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की कदर करें, बहू की त्याग और सेवा को पहचानिए। बेटे या बेटी से पहले बहू को अपना मानिए। मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा बेटा मेरा अभिमान भी छोड़ो, बहू मेरा अभिमान बोलो। बेटी साल में 65 दिन सेवा करेगी, बहू 300 दिन आपके पास रहेगी।

0: तो दोस्तों सुनने वालों, ये संदेश हुआ बबली जी ने लेकर आए अपने और बुढ़ापे का सहारा। तो शांता जी, इस पे आप क्या कहने वाले हैं? बुढ़ापा का सहारा।
1: हाँ, तो ये जैसे बबली ने बताई ना, तब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिलजुल कर रहना, एक दूसरे को समझना, समझाना और समझ के रहना।
0: राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक और गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और आज का विषय जो हमारे बड़े धमाकेदार है, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, और जैसे कि भी सुनने वालों से इस बात को सुना ही चुके हैं शांता जी कि जम्मू और कश्मीर में थोड़ा अंतर है ना, और अंतर क्या है, पर और भी काफ़ी संदेश है जो हम सब रखने वाले हैं। पहले हम एक और उसी, और क्या कहते हैं उसे राजेंद्र जी, शांता का पिटारा सा निकाला हुआ।
2: हाँ,
0: तो सभी सुनने वालों को सुना देते हैं।
2: ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा है,
0: ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा है। हमारे सभी सुनने वालों जो इस समय, खास करके जो इस समय काम भी करते हैं ना, कोई जो जैसे कि हमारे रई इंस्ट्रक्टर होते हैं जो इस समय अपने और शिक्षक को लेकर के कार में और चला रहे हैं और ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो आप सभी को लिए भी, और जो इस समय रास्ते पे है, जो अपने गाड़ी में भी ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और ख़ास करके राजेंद्र जी, बात तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हुआ कि हमारे श्रीमती लक्ष्मण जी ने श्रीमती लक्ष्मण जी ने हमारे सभी कर्मचारियों के लिए, और जा करके ठंडी आने वाले है और सभी के लिए शाल और मिर्च का और तैयारी करके और ला करके फौन हिंदुस्तानी में रेडियो में पहुंचाए हैं। तो दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हर बार, और हम सब के लिए भी कुछ ड्रिंक आदि भी तैयारी करके, मिठाई आदि लेकर के यहां उपस्थित हो जाते हैं। हम सब जरूर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी, पूरा टीम फाहौन की ओर से। और ऐसे हमारे कार्यक्रम सुनते रहना, जरूर हम नवन संदेश लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर चलते हैं राजेंद्र जी, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
2: जरूर।

0: ऊंची पर्वतों पे मैया का बसेरा है, और जहाँ जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत है वहाँ तो भर देवता विराजमान है। जैसे केदारनाथ में शिव जी हैं, बद्रीनाथ में विष्णु जी हैं, गंगोत्री में गंगा मैया है और यमुनोत्री में यमुना मैया है। इस प्रकार से ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे मैया का बसेरा रहता है। लेकिन अब हमारा समय हो रहा है किसकी तरफ, न्यूज की तरफ समय जा रहा है। तो हम न्यूज सुनेंगे थोड़ी देर, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।
1: एडवोकेट का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahon FM.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië en de bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Steinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Steinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral ook zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte, vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: सब लोगों ने बड़े अच्छे से सुना और क्या करना चाहिए न्यूज में, क्या कहां हो रहा है इस न्यूज में, सब चीजें रहता है दुनिया का खबर। लेकिन हम अपना खबर जो है सुबह के लिए वो भी कुछ चाहे ना, क्या हमें भी क्या करना चाहिए। तो जब सुबह उठते हैं तो उस समय शहद और नींबू, यानी शहद डालकर पीने के 10 लाभ हैं। गुनगुने पानी में शहद डाल के क्या क्या लाभ हैं नींबू के साथ मिला के, ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है। लोगों ने, कुछ लोग जानते भी हैं, वो जो नहीं जानते वो जान भी लेंगे। सुबह गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू के नियमित सेवन से सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से हमारा हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। निजात यानी छुट्टी मिल जाती है बीमारियों से। गुनगुने पानी में शहद के फायदे, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि सुबह एक गिलास गुनगुना पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद को गर्म पानी के साथ लेने से वजन कम होता है और इसके नियमित सेवन से सेहत से जुड़े कई समस्याओं से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है।
5: हाँ राजेंद्र जी, बात यह है कि ये जो आप हम लोग को ये संदेश सुना रहे हैं ना, और जिसे हम गुनगुना के बोले तो हल्का गरम होना चाहिए, और नींबू डाल के और इससे भी वजन कम होता है।
0: जो लोग मोटे लोग हैं, मामा जैसे लोग हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है।
5: तो मामा को ये तो रोज पीना चाहिए।
0: हाँ,
5: तो ऐसा है तो ये कार्यक्रम जरूर सुनते होंगे मामा जी, तो हाँ। अगर आप इस पे थोड़ा ध्यान दें। हाँ। क्योंकि वजन इससे भी घटता है, और पर सिर्फ वजन नहीं है, शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं। राजेंद्र जी,
8: लौ वातर में होने गाड़ के और नींबू लमचे,
5: पर इसमें तो संदेश कुछ और है मेरे ख्याल से राजेंद्र।
0: हाँ, अभी और है, काफी संदेश है। हम आपके लिए लेकर आए हैं गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन करने के फायदों के बारे में। अच्छे पाचन के लिए सुबह गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीना चाहिए।
5: पर राजेंद्र जी ये तो बताओ, पाचन अब थोड़ा अब हम लोगों है कुआटा, भिंडी डाम,
0: हाँ,
5: लिफोर्नो,
0: हाँ, हाँ,
5: और ऐसे सरमक्का,
0: पाचन यानी
5: तो सर नाम में थोड़ा ना
0: भोजन खाते हैं वो अगर पचे ना मोई से तो पेट में पड़ा रहे, तब जब पचता नहीं तो सड़ जाता है तो
5: पचानी का।
0: हाँ, पचानी का
5: ऐसा।
0: तो इसलिए शहद में नींबू मिलाकर पीना चाहिए, या पेट को साफ करने में मदद करता है और लीवर में रस के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे पाचन में मदद मिलती है। नींबू में मौजूद एसिड आपके पाचन तंत्र में मदद करता है और अवांछित विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा शहद एक एंटीबैक्टीरियल के रूप में कार्य करता है और आपके शरीर में मौजूद किसी भी तरह के संक्रमण को दूर करने में मदद करता है और कब्ज को भी दूर करता है। कब्ज दूर कैसे करें इस बारे में भी समझना होगा।
5: तो अब ये तो बात बता दो, कब्ज क्या चीज है?
0: कब्ज मतलब जैसे हम जो भोजन खाते हैं और वो वहीं जम जाता है, पेट से साफ नहीं होता, तो रुका हुआ पेट में भोजन को कब्ज कहते हैं।
5: ऐसा तो ये भी गुनगुना पानी और नींबू और शहद से इसका भी।
0: हाँ, ये मिश्रण जो है कब्ज के लिए तत्काल उपाय है, मतलब तुरंत काम करता है, पेट साफ हो जाता है। या आंत का प्रोत्साहित कर मल त्यागने में मदद करता है। इसके अलावा यह आंत म्यूकस में बढ़ावा देता है, म्यूकस यानी उसका लुब्रिकेशन, पेट को हाइड्रेट करता है और सूखे मल को पानी में भिगो देता है। इन सब की एक साथ मौजूदगी से मल त्यागने में मदद करता है। लस्सी का प्रणाली की सफाई में मददगार, लस्सी का प्रणाली में पानी और आवश्यक तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, जिससे आपको सुस्त और रुका हुआ महसूस होना, कब्ज, सोने में परेशानी, उच्च या निम्न रक्तचाप, यानी रक्तचाप का मतलब है जो ब्लड सर्कुलेशन ये तो तेज हो रहा है या कम हो रहा है, तो रक्तचाप उच्च या निम्न नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए,
5: रुद्रक जो कहते हैं ना।
0: हाँ।
8: और जब कब्ज होती है तो पेट में बहुत दर्द भी होता है,
0: बहुत दर्द। तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। सुबह सुबह इस मिश्रण को पीने से लसीका प्रणाली को हाइड्रेट होने में मदद मिलती है, जिससे न केवल सभी उपरोक्त लक्षणों बाकी प्रतीक्षा प्रणाली में भी सुधार होता है। इस प्रकार से इन चीज़ों में सुधार होता है। अब हम बात करते हैं मौखिक स्वास्थ्य में सुधार। जो स्वास्थ्य में सुधार कैसे होना चाहिए, एसिडिटी प्रकृति का नींबू, शहद और गुनगुने पानी के साथ सांसों की बदबू को तुरंत दूर करने में मददगार होता है। नींबू अपनी लार ग्रंथियों को सक्रिय और आक्रामक बैक्टीरिया को मारकर मुंह शुद्ध करने में मदद करता है। सांस में बदबू का कारण जीभ पर सफेद परत का गठन मुख्य रूप से खाद्य और बैक्टीरिया से मिलकर भी है। यह रस इस परत को प्रभावी ढंग से हटाकर सांस की बदबू से प्राकृतिक रूप से छुटकारा दिलाता है और मूत्र वर्धक में रूप में कार्य शहद में बहुत ही शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल के रूप के गुण होते हैं।
5: ये सब सिर्फ वो
0: सिर्फ सुबह नींबू और शहद गर्म पानी गुनगुने पानी में डालने से ये सब चीजें ठीक होती हैं।
5: तो राजेंद्र जी, जरूर हमें तो इस बात को पता है कि फाहून हिंदुस्तानी रेडियो हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक अपना अपने ओर से और मौका मिलता है हम लोग के संदेश सुनाने के लिए, और जो अन्य देशों में भी ये कार्यक्रम को सुना जाते हैं, तो क्यों ना हम एक सुंदर सा और गीत के ओर, क्योंकि ये बात है राजेंद्र जी, हमारा जब बुढ़ापा आते है ना, तो कुछ बातें हमें हर बार ख्याल आता है कि अब तो बच्चे भी परिंदे जैसे हो गए हैं, अब तो बच्चे भी परिंदे जैसे हो गए हैं, साथ रहकर बड़े होते हैं और बड़े होकर भी उड़ जाते हैं। तो जब उड़ जाते हैं तो आपको अपना सेहत के भी ध्यान देना चाहिए, आप कैसे और क्या कर सकते हैं, जरूर इसमें कुछ संदेश है जो हमारे पास रखा जाता है और उसे आपके लिए हम सब कोशिश करते हैं रखने के लिए। हम सब एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और फिर गीत के बाद ये संदेश पूरा नहीं हुआ ना राजेंद्र जी?
0: नहीं, अभी थोड़ा सा एक बार और रहेगा।
5: तो एक बार और रहेगा ये संदेश जो जिसमें महत्वपूर्ण बात है, गरम क्या कहते हैं,
8: गुनगुने पानी
5: लव वाटर में मिलाकर नींबू और
8: शहद
5: शहद कहते हैं राजेंद्र जी,
0: होनिंग
5: को, तो वो उसमें कितना ताकत है, कितना वक्त द बलांगराई का एसेंसिस दरफान और वाचे दरमियाई काम बराई का। तो दोस्तों हम एक सुंदर से गीत के ओर, पहले बबली जी कुछ कहने वाले हैं,
8: क्योंकि उसमें नींबू अपना असर करेगा, शहद अपना असर करेगा और पानी अपना असर करेगा, जब तीनों चीजें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा।
5: ऐसा होता है तो राजेंद्र जी, ऐसा क्यों ना वही पिटाड़ा में और जो कंप्यूटर में हम लगा चुके हैं शांता जी जो खोज करके लाए।
0: हाँ, जो गीत के बोल है, ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ, चला देते हैं।

0: ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतर आओ माँ। अगर माता जी नीचे उतराई फिर लोग ऊपर कैसे जाएंगे?
1: इस बात पे जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि हिसाब किताब तो सिर्फ ऊपर वाला ही, और हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाला ने ही सही और लगाया करता है। सबको खाली हाथ भेजते हैं और खाली हाथ बुलाया करता है। तो दोस्तों, अभी आप जो संदेश सुन रहे राजेंद्र जी के ओर से कि सुबह में और जा करके जो गर्म पानी लव वाटर से और मिला करके नींबू और शहद जो होनिंग कहा जाता है कितनी कितनी और चीज़ों के लिए लाभदायक है, राजेंद्र जी हम सबको आगे और सुनाइए।
0: आगे का संदेश इस प्रकार है कि इसमें कई प्रकार के संक्रमण को दूर करने की क्षमता भी होती है। नींबू और पानी के साथ या मिश्रित एक उत्कृष्ट आपके शरीर से बाहर निकालने वाला एजेंट के रूप में कार्य करता है, या आपके मूत्र मार्ग को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से पीड़ित महिलाओं के लिए यह रस का एक वरदान की तरह साबित हुआ है, क्योंकि यह संक्रमण को दूर करने में मदद करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है। शहद और गर्म पानी से शरीर में एनर्जी में भी वृद्धि होती है। शरीर से ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म और कार्य प्रणाली में भी वृद्धि होती है। शहद शरीर के अंगों को ठीक से काम करने के लिए प्रेरित करता है। सुबह में गर्म पानी नींबू के साथ लेने से आप दिन भर ऊर्जावान बने रह सकते हैं। वजन घटाने में मददगार किस प्रकार होता है? शहद और नींबू के साथ गर्म पानी लेने से भूख कम लगती है। शहद और नींबू के साथ गर्म पानी में बड़ी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो भूख की इच्छा और शुगर लेवल को कम करके पर्याप्त एनर्जी प्रदान करता है। इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह इसका सेवन करने से दिन भर में आपके द्वारा लिए गए भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी के साथ शहद और नींबू के साथ करने से आपका वजन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये त्वचा के लिए भी लाभकारी है। त्वचा यानी
1: कि हमारे चमड़े।
0: हाँ, त्वचा के लिए नींबू के लाभ अनगिनत हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें मौजूद क्लेंजिंग तत्व रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, नई रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में

0: मदद करता है। पानी और शहद का मिश्रण आपकी त्वचा के लिए एक अनूठा दृढ़ जीवाणुरोधी और कोलेजन बढ़ाने वाले गुण होते हैं। इसलिए अगर आप स्वाभाविक रूप से चमकदार त्वचा चाहते हैं तो यह पेय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। पोषक तत्व और विटामिन से भरपूर शहद और नींबू के गर्म पानी में कई जरूरी एंटी ऑक्साइड विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होता है, इसलिए इसके सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। साथ ही यह वजन कम करने में सहायक होती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता में मजबूती। शहद का सेवन शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद, इसलिए डॉक्टर हमेशा इसके सेवन की सलाह देते हैं। शहद के साथ नींबू और गुनगुने पानी के नियमित सेवन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। शहद और नींबू में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स और कई पोषक तत्व शरीर को मौसम बदलने के साथ होने वाले संक्रमण को भी दूर रखने में मदद करता है। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा जो मिश्रण है तीन चीज़ों का, पानी यानी गुनगुना पानी, शहद और नींबू, तो ये सब इतनी चीज़ों में मदद करता है। तो जो लोग इसके बारे में पहले से जानते करते आए हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं इस प्रकार से अपना। तो संजय जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे इस बारे में?
1: जरूर राजेंद्र जी, पूछना तो ये है कि जरूर ये संदेश जो आपने दिए हैं ना, हमारे सभी सुनने वालों इससे ज़रूर कोई ना कोई और लाभ उठाए, ताकि हमें छोटा सा चीज़ है ना, कोई मंगा दवाई नहीं, कोई मंगा दवाई, राजेंद्र जी शांता जी का माइक ऑफ है, कोई मंगा दवाई नहीं है। और इससे कितना आसानी से और कितना चीज़ से हम सब अपने शरीर अपने में बदलाव ला सकते हैं ना,
2: फ़ायदादार है।
3: हाँ, क्योंकि सब चीज़ें घर पे मौजूद होती हैं, घर में मिल जाती हैं, बाहर से लाने की भी नहीं ज़रूरत।
1: तो अगर दोस्तों इस बात को ज़रूर ध्यान देना, और राजेंद्र जी जो इस समय पैनल पे दूसरा गीत के रखने वाले हैं, पर आज का विषय जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का राजा भी जिनका, और राजेंद्र जी कितने साल के हुए राजा वहाँ का?
0: राजा जो महाराजा करण सिंह है, राजा हरि सिंह उनके जो पिताजी राजा हरि सिंह, उम्र 96 ईयर हो चुका है,
1: 96 ईयर,
0: और अभी भी वो अच्छे से चलते फिरते हैं, बड़े सब काम करते हैं। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं जो कि अभी भी सुचारू रूप से सब अच्छे ढंग से चलते हैं। जम्मू कश्मीर में भी है, हरिद्वार में, पूरे भारतवर्ष में उनके मंदिरों
1: बनाए हैं
0: बहुत।
1: और जो जिनका, और हम अभी उसके बारे में जरूर सुनने वाले हैं, पर बबली जी मैं देख रहा हूँ आप भी कुछ कहने वाले हैं।
3: हाँ जी जरूर, एक छोटा सा संदेश है, मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया ना बिछोना होगा, साथ होगी दोस्तों की यादें और एक शमशान का कोना होगा, और वहाँ लिखा होगा मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते।
1: तो ये तो पूरा सत्य है, और हम सब उस पे जरूर इन बातों को, सुंदर सुंदर संदेशों को जरूर कार्यक्रम में रखते हैं। शांता जी कुछ आप कहने वाले थे, जम्मू कश्मीर कब जा रहे हैं आप?
2: जम्मू कश्मीर अगर बुलावा होगा तो जाऊंगी, पर जम्मू कश्मीर में वो श्रीनगर कहते हुए ना,
1: श्रीनगर
3: कश्मीर में,
2: कश्मीर के श्रीनगर, और क्षीर सागर कहाँ पे, वहाँ पे भी है?
0: क्षीर सागर भगवान विष्णु लोक में है, जहाँ पे दूध का सागर है, जैसे हमारे इस धरती इस भूमंडल में पानी का सागर है, वैसे ही विष्णु लोक जो है, विष्णु लोक में वहाँ दूध का सागर, इसलिए क्षीर मतलब दूध, उसका सागर है, दूध का सागर है, जहाँ भगवान विष्णु अपने शेष नाग की सैया पे लेटे रहते हैं, उसको क्षीर सागर बोलते हैं।
1: और वहाँ बस शांता जी आपका कोई इरादा थोड़ो है उधर जाने का?
0: अभी तो नहीं होगा
2: अगर जाना हो तो जरूर जाऊंगी।
1: और दोस्तों हम अगले गीत की ओर जरूर बढ़ने वाले हैं, अभी जो हमारा विषय है उसके बारे में राजेंद्र जी हम सबको सुनाने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में। पर पहले उस ओर बढ़ने से पहले इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है ना, ये रेडियो जो हम सबको ये अवसर देते हैं, डायरेक्टर और जो हम सबको ये अवसर देते हैं और कार्यक्रम जो यहाँ से हम लोग का ग्रुप जो है जिसमें हम सब इकट्ठा हो करके और कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश। और ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य भी यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा और प्रकाश आ जाए। तो यही आशा रखते हुए हम सब हर बार और हमारे विशेषज्ञों जो भारत देश से और यहाँ होलांत से भी जो हम सब के लिए तेई मास खोज खोज करके रखते हैं, भाई संजय शर्मा जी जो दिल्ली पहाड़गंज से, भाई रिंकू और कालिया जी जो उत्तम नगर द्वारका से, मोहन गार्डन से, होलांत देश में रत्ना जी जो दनहाख से हम सब के लिए कार्यक्रम रखते हैं और विषय खोज कर और रखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी गीत की ओर हम बढ़ेंगे, गीत के बाद में आज का विषय उस ओर छलांग लगा देंगे।

0: चंचल जी ने भजन गाया है, बहुत ही अच्छा भजन वो गाते हैं, गाते थे, अब तो रहे नहीं, अभी पिछले साल चले गए बेचारे, लेकिन उनके भजन अमर हैं और सब लोग उनको बड़े प्रेम से सुनते हैं आज भी। अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं कि कश्मीर की जो 10 मेन बातें हैं पहले वो करेंगे, इसके बाद वहाँ के राजा की बात करेंगे। कश्मीर के बारे में 10 वाक्य। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग होने के अलावा यह अपनी खूबसूरत वादियाँ, जंगलों, नदियों और फलों के पैदावार के लिए मशहूर है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही लगती है, क्योंकि इसकी बहुत से विशेषताएं हैं जिनको इस छोटे से निबंध में बयान नहीं किया जा सकता। जो हमारा कार्यक्रम अब बच गया है, इसमें क्या हम इस कश्मीर के बारे में बोलें, क्योंकि बहुत बड़का बात रहा, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि छोटे से समय में ही बड़ी बात हो जाए तो क्या कम है।
1: बिल्कुल एकदम राजेंद्र जी, क्योंकि कश्मीर के और एक उसे कहा जाता है दुनिया का स्वर्ग, ऐसा हाँ, कितने लोग भी कहते हैं।
0: परंतु आइए जानते हैं कश्मीर के बारे में जो 10 प्रकार की लोग बात करते हैं। नंबर एक बात है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, जैसे कि संजय जी आप कह ही रहे हैं धरती का स्वर्ग है। यह राज्य भारत का अभिन्न अंग है। और नंबर तीन बात जो है, कश्मीर का भूभाग सबसे बड़ा है। चौथी बात इसमें आती है कि कश्मीर को भारत का मुकुट भी कहते हैं। इसके इतिहास बेहद प्राचीन हैं, कश्मीर का इतिहास सबसे पुराना है। मुगल शासक जहांगीर ने कश्मीर को परियों का देश से संबोधित किया था। और नंबर जो 7 बात है, कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। गुलमर्ग को सुंदर और सुगंधित पुष्प इसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। जो गुलमर्ग एक जगह है वहाँ पे पुष्प बड़े सुंदर हैं और सुगंधित पुष्प है, खुशबूदार पुष्प है, फूल यानी पुष्प यानी फूल। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में ही है। डल झील देश और विदेश के नागरिकों को आकर्षित करती है। डल झील है जो, उसमें विदेशी नागरिक बहुत से आते हैं, उसको सब लोग देखते हैं। कश्मीर भारत का सबसे और बेहतरीन राज्य है। यह उत्तर भारत में झेलम नदी की घाटी पर स्थित है। कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग तो कहते हैं, लेकिन लोग इस स्वर्ग को देखने से देश विदेश सब जगह से आते हैं। ये सभी मौसम में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसमें गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ़ पड़ी हो या कैसे भी मौसम हो, सब में अच्छा दिखता है। गर्मियों में कश्मीर में हरियाली देखने को मिलती है, गर्मियों में भी हरा रहता है, और सर्दियों में यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है। यहाँ पर जब जो सेब है उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, और पूरे देश में तो भारत में तो जाता ही, विदेशों में भी इसका सेब जाता है कश्मीर से। और मैंने देखा है कि कश्मीर में जो जंगल है, जंगल में भी सेब होते हैं।
2: लेकिन कश्मीर के शॉल भी बहुत मशहूर हैं, पश्मीना शॉल।
0: हाँ, उन जंगलों में पश्मीना शॉल के, पश्मीना जो बनता है, पश्मीना एक रिंग होती है जो उसके बीच से पूरा शॉल निकल जाए तो
2: हाँ जी, पश्मीना।
0: और कश्मीर में घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, बहुत लोग इसमें घूमने के लिए आते हैं और घूमने लायक जगह है।
1: राजेंद्र जी, मैंने नहीं समझा, मैं इस बात को नहीं समझा, क्योंकि आपने दिखाया कि उंगली में जैसे कि कुछ क्या उसके बारे में कुछ।
0: हाँ, उंगली में जो दिखाया रिंग नहीं होती जो उंगली में,
1: हाँ हाँ जी,
0: अंगूठी,
1: हाँ जी,
0: उस रिंग से जो सॉल है,
1: यानी कि रस्सी निकाल सकता उतना पातर,
0: जो सॉल है
1: हाँ
0: कश्मीर का,
1: हाँ जी,
0: वो उस रिंग से निकल सकता है, यानी इतना पतला और इतना
1: पातल रस्सी।
0: हाँ,
2: क्योंकि कश्मीर के शॉल बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है।
1: ऐसा बात है।
0: पश्मीना जो कश्मीर का पश्मीना है,
1: पश्मीना
0: वो पश्मीना ही निकल सकता है,
2: शॉल का नाम है पश्मीना।
0: हाँ। और गुलमर्ग की खूबसूरती के कारण इसे कश्मीर की जान भी कहा जाता है। गुलमर्ग जो एक जगह है उसकी खूबसूरती बहुत है। कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल होने के साथ साथ यह सर्दियों से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसको कुछ विशेषताएं और खूबसूरती का कारण बहुत प्रसिद्ध कर जाती है। कुछ कारण हैं इसे प्रसिद्ध जो बनाते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे केसर, केसर यहाँ का बड़ा फेमस है, सिकारा, मौसम यहाँ का बड़ा अच्छा, सेब और सूखे मेवे, सूखे मेवे में जैसे बादाम है, अखरोट है, और
1: मेवा कहते हैं ड्राई फ्रूट ना,
0: ड्राई फ्रूट्स हाँ, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो कश्मीर में होते हैं। और यहाँ का गोंडोला, गुलमर्ग में गोंडोला होता है, और इस प्रकार से कश्मीर और भी खूबसूरत इन चीज़ों से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि कश्मीर में कौन सा फल प्रसिद्ध है, जो यहाँ का फल है वो दुनिया में कौन सा प्रसिद्ध है। तो यहाँ के सेब दुनिया भर के मशहूर हैं, यह अपने सेब,
1: सेब कहते हैं वो एप्पल,
0: एप्पल।
1: पर राजेंद्र जी, हॉलैंड में तो रंग बिरंगी, कभी एल स्टार तो कभी गोल्ड स्टार की क्या क्या नाम है शांता, ढेर सारे ना।
0: जो तो वहाँ का जो वहाँ का है सेब, वो हर प्रकार का सेब वहाँ रहता है,
1: वो सब प्रकार,
0: सब प्रकार का। यहाँ के सेब दुनिया भर में मशहूर हैं, यह अपने फल उत्पादन, सेब जो है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फल है। यह राज्य भारत में स्ट्रॉबेरी उत्पादन के रूप में भी उभर रहा है, स्ट्रॉबेरी में भी यहाँ आगे हो रहा राज्य बहुत ज़्यादा। अत्यधिक मांग के और उत्पादन के कारण युवा अपनी लाभदायक आजीविका के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती में उद्यम कर सकते हैं, यानी स्ट्रॉबेरी की खेती में अभी लोग इस तरफ जा रहे हैं। सेब तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन स्ट्रॉबेरी में काम चल रहा है।
1: स्ट्रॉबेरी बोले तो
0: कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पर
2: डोगरी,
0: हाँ, अधिकतर कश्मीरी डोगरी बोलने बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी आधिकारिक भाषाएं होंगी। आगे जो भाषाएं होंगी यहाँ पे हिंदी होगी, अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत बोली जाएगी, और डोगरी तो है ही है, लेकिन कश्मीरी भाषा में पुरानी जो उर्दू बोलते हैं लोग वो भी थोड़ा सा रहेगी। अब प्रश्न है कि कश्मीर में लड़की को क्या कहते हैं?
1: लड़की को
0: सभी राज्यों ने अपनी भाषा है, सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, और किसी वस्तु विशेष को स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे कश्मीरियों में एक लड़की को कूर कहा जाता है,
1: ऐसा
0: जी। इस प्रकार से कश्मीर का जो इतिहास है अलग अलग प्रकारों से है। कश्मीर की बात करें तो क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़े, और फिर हम लोग कश्मीर की बातें आगे भी करते रहेंगे।
1: जरूर राजेंद्र जी।
0: कश्मीर जम्मू में ही वैष्णो माता जी का मंदिर है, और वहाँ के जो भजन है बड़े प्रसिद्ध हैं, तो उसी को क्यों ना चला दिया जाए।

0: काफी नजदीक हो गया, लेकिन लागी छूटे ना अब तो सनम। ये एक हमारा जो गाना है वो बड़े ही फेमस है, वो जैसे ही इस गाने की तरफ हम बढ़ते हैं सबको पता चल जाता है कि ये लोगों का समय जो 2 घंटा है वो पूरा हो चुका है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें इस बात से पता चल जाता है कि कार्यक्रम अपने समाप्ति के सीमा पे आकर पहुंच चुके हैं।
0: तो चला देते हैं लागी,
1: चला देते हैं राजेंद्र जी।

उनको हीरे मिल गए जिनको हीरों की चाहत थी, और वो खुद हीरे बन गए जिनको गोविंद की चाहत थी। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।

फूलों की तरह महकते रहो और सितारों की तरह चमकते रहो। आपके साथ दी आपको हम दिल से धन्यवाद कहती हूँ। साथ देने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। सेविका शांता की प्यार।

चाहे जाए जिया तेरी कसम लागी छूटे ना। तो इसी प्रकार हम भी रेडियो से कभी छूटेंगे नहीं, चाहे तो कुछ भी हो जाए, चाहे जिया जाए या रहे, लेकिन रेडियो के साथ हम सर में हर समय बने रहेंगे। हर बार की भांति अगली बार भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी श्रोताओं को जो हमारे इतना प्रोग्राम साथ देते हैं सुनने के लिए और बड़े प्रेम से सुनते हैं, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज का कार्यक्रम में हमारे सहयोगी साथी और जाकर के समता खेमाई जी, बबली आसरा जी, राजेंद्र सिंह जी, अब मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा जरूर ये रखता हूँ कि कुछ ना कुछ संदेश आप तक पहुँचा होंगे। हम ये बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे अच्छे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। बस यही जिंदगी है। नमस्कार दोस्तों।

और दोस्तों हम सब चाहे हॉलैंड में है चाहे जोन आई संदेश में है लेकिन आप चाहे जहाँ जाइयो जा अगर कोई और आपको देखेगा तो वो जान जाएगा नहीं वो पूछेगा भाई आप कहाँ कहो तो आप कहेंगे हम हॉलैंड की तो बोले नहीं तो ये मैं अपन आंध्र क्लर्च तब बोलियो ना ना ना हम सरेनामी हैं तो हमारे क्लर्च से पता चल जाता है कि हम कहाँ के हैं दोस्तों ऑन द फ्लाइट यू खाली सेक्स एक बेन खबरी नीलांड यू खाली सेक्स या एक बेन फन हीर एक बेन फन दार मार और स्प्रॉंगलक हील फिर मैंने सेक्स ये बेन फन इंडिया नहीं या नो मे फॉर ऑल्स वेल एंड दार मार की सीकर ट्रस्ट ऑफ सेंट मैंने सो खाते तो यू मार की सीकर ट्रस्ट ऑफ सेंट तो सुरिनामी जो आज हम आप लोग को सुनाएंगे और इसके बाद हम क्या सुनाएंगे दोस्तों आओ एक और सुना जाए मैथ यादगार ऑर्केस्ट्रा इन हॉलैंड टूर की ये सॉन्ग है एंड इट्स एन हील फील फॉर ओस कलाकार या सुरिनाम के कलाकार कितने इसमें मिल के ये गीत को गाए हैं और इस गीत इस लाइफ स्टेज सॉन्ग मेंज़ En laten we even gaan luisteren. Het is heel mooi met voice

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिस राम खेलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिस राम खेलावन इज ऑन टॉपर, एन फ्रॉम द टॉपर्स नेचुरली द हेल मो यूनिवर्स फॉर ऑन सूरीनामी हैव गेसोन। एंड लेट्स वे फॉर गाना लिस्टर फ्रॉम क्रिस राम खेलावन।

Oh, wie kan het anders zijn naar onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunya mein hi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. We have ook een Den Haag imam die over Surinaamse lied hamare sarnami ke bhasha wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ऑनसे रबिन बलदेव सिंह. रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो डन हाक का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे दरहाख के रबीन बलदेव सिंह हैं। मैं से वहाँ नार ओन से फॉलोस्लीत या दट मुत ओक अंकीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरनाम से फॉलोस्लीत इन सरनामी हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरनाम से फॉलोस्लीत को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जोंग तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरिनामी गीत सुनाएंगे।

और मेंसे ये है हमारा सुरीनाम। Als je dit soort liedjes heel aandachtig gaat luisteren, mensen, krijg je gewoon kippenvel ervan. Ha, agar je kuch apna khun mein hai, apna shareer mein hai, to ye sab geet jo hai, to aapko jhakjor dete hai ki hamara desh Surinam to apna hai desh hai, jahan pe hamara janam bhoomi hua hai. Lekin sab log ko wo feeling nahi hai, lekin jitne log ke aapko feeling hai, to hum chalte hai एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सूरीनाम देश में आए हैं वो भी एक हम रख देते हैं।

0: Blue Wonder. 100% krachtig reinigen, 100% geur. Wonderbaarlijk krachtig.
1: Yaniki, Guru Dat Kala Singh Bhi, ek Surinam Kaan, aur bahut bada kalakar the. तो इसके बारे में कितने लोग को तो पता है कि ये गुरुदत्त कला सिंह क्या है, कौन था. तो ये भी एक गीत को गाया है, हम हैं सरनाम के लड़के.

पुराना कलाकार है गुरु दत्त कल्ला जी का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम की। जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है, आज के यौवन क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपने स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला अन लास्ट मैन से दैट इज निमत अंदर दन ओन से एक सूरीनामी हमारा दिए सत्यनाना सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनंद रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मा सत्यानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ईर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरना।

पुंताओ और पुंतावानी किरमी। तो दोस्तों जवानी याद हो जाते हैं, पुराने यादें आ जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। तो और क्या है, क्या है अगला गीत, ईवान की ओर हम जाते हैं, आओ सुना जाए। यो भी पॉपी सॉन्ग।

फुलौरी बिनय चटनी कैसे बनी और चित्रा लोवे चित्रा कोई के साथ भाग्य है और ये कौन चित्रा है सब चित्रा ना भाग्य वाला है कोई भग जा है सर मक्का कोई भग जा है कंडाल कोई भग जा है वेलखदा खा बे से देई में भग जा है और कौन चित्रा है ये आप लोग जानो अपने प्यार के धोखा दे दे कभी कभी लोग भाग जाते हैं तो हम चलते हैं कपड़ा धोने के वॉश मशीन में।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों, तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं, और प्यार के मूड में आए हैं तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए, और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

ओ बाबुल सुप्रमण्यन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है। कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग,
1: बहुत प्यार
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम।

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं। अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमान श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत आतिश वेलन हील अवली फन 1975 और फिल्म के नाम बा भाभी और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

तो पूछे कौन है और बता दीजिए ना नाइटिंगेल लता जी और प्रणाम श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खुजते हैं क्या खुजते हैं लोग खुजते हैं कि हम कहाँ अपना प्यार को ढूंढूं और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं और ये गीत है रब को भी लोग देख देते हैं प्यार भी हमारे

ये प्रोग्राम 6 बजे तक जारी रहेगा दोस्तों, उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम आप सुनते रहना, खास करके जो न्यूज ब्रेक है जॉनी का आप जरूर सुनते रहना। शुक्रवार है जून के 5 तारीख, आज शाम का मौसम के समाचार, फमिला कुमन फ्राल इन सैडन एंड ओसन बैन फोर और टेम्परेचर जिसमें सी फंथिंग एंड नी फंथिंग खराड़े रहेगा। कल जब शनिवार है तो मैक्सिमम टेम्परेचर 18 खराड़े 18 खराड़े होने वाला, उसके बाद सोमवार रविवार को 20 खराड़े रहेगा, वीकेंड के बाद सोमवार को 21, मंगलवार को सी फंथिंग और बुधवार को भी 17 खराड़े होने वाला है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, मिस्टर सानू एंड अलका।

ये मुलाकात हो जाने के बाद ये जमी गा रही है, आसमान गा रहा है, मिस्टर अमित कुमार और साथियों के आवाज में।

0: जमी गा रहा था, आसमां गा रही थी। दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है तो आज है जून के 5 तारीख और आज वही दिन है जब हमारे बाप दादा लोग इंडिया भारत से सूरीनाम देश आए थे। और वो कहानी है, ये बात है आखिंग फैफन सीफन तक में जब इंडिया से लोग आखिरी द्रियन शासक जब इंडिया से हमारे बाप दादा लोग सूरीनाम देश आए थे। तो एक दो गीत मैं पेश करूँगा ये प्रवासी का, और आशा उम्मीद के साथ कि आपको जरूर पसंद आएगा।
1: 140 बरिस हो गए जब हम लोग के पुरखों भारत देश के छोड़ के गए सूरीनाम देश। सपना देख के

1863 में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत होइगे रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उबरी से आजाद होइगे रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार

हॉलम के इजाजत दे भारत में मजदूर के खोजे के खातिर ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू भइल। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाए के बहकाए के आँखी में धूल झोंक के सुरीनाम ले बोलल गए चल श्रीराम देश उधर सब कुछ मिले। कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू।

कुआं पर 5 बरिस कोनो जमींदार के खातिर खेती बाड़ी करती, तब ढेर पैसा मिलत और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिलल। अरे खेतवा तो मिलल, बाकी बहुत मेहनत करी, धूप में बहुत मेहनत करी।

पीछे छोरे के परल आपन देश, बाकी अब सरनाम अपन देश हो गए सरनाम। अब हिया आई के पहुंच ली, अब इधर ये रहबे जिंदगी, अब हिया गुजरी घर द्वार बाल बच्चन, अब यही हमार देश सरनाम हमार देश।

0: सही बात है, सरनाम हमारा देश, हम सबका पैदाइश हुआ है सरनाम में, इसीलिए सरनाम हमारा देश है।
1: गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ, AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर।
0: हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन डे है, तो आज प्रवासी का दिन है, और दस भाषा में इमिग्रेशन डे हम सब कहते हैं, और बहुत से जगह पर इस वक्त भाषण हो रहा है, जैसे कि डेन हाग शहर का जो बाजार के सामने जो पार्क है, वहाँ भी जोर शोर से इस वक्त भाषण हो रहा है। अगर आप घर पर बैठे हुए या आपके समय हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो।
2: जैसे अब राज त्योहार है, हैरवा के राज रहा, तो सोचिस कि हुआ सोरा से सरवैया बिशनी सो फरिवा सब रही होकर कुश्ती वाला, तो सोचिस कि एक पठाई दे हुआ पर यहाँ, और हुआ जोन जो सिंहा है तो एक माँ ढारी, और ये जोन स्त्री अकर है तो लेके राजा के हम पहुँचा दे, तो वो जोन हरदी का राज है तो हम मैं दे दे। तब ये सोच के तो ओके पढ़ाई से बोले कि तू जा हुआ पर यहाँ कोई नौकरी कर, तब वो चिट्ठी लिख कर दी से, तब हुआ पर यहाँ गए तो चिट्ठी में लिखा रहा कि पहुँचे देर ना हो ये के माँ ढरी है ना, तब वो तनी पढ़े रहा हो लोरी की ना, तब जब चिट्ठी खोल के देखी तब तो लिखे रहा ऐसे ऐसे हाल, तब गए तो ओकरे अखाड़ा में जाए के जरूरी ना रहा, तब वो बताए लोरिक बोले भाई हमहू के कोई पेंच सिखा दे ना, तो बोले भाई हमरे अखाड़ा के पूजा लागे है ना, तब गए अंत्य तार बजाई ना उनके अखाड़ा छोड़ के, तब सोरा से सरवैया बिशनी से परिवार ही सबके ललकार दी ठाँव ठाँव पकड़ी ना, तब बोले भाई तुहरे अखाड़ा के ही चाल है, तब बोले ना सब पेंच बताओ है, तब वो अब जब पुजका है लोरिक तब पकड़ पकड़ टंगरी लाग है चीर है, और चीर चीर खा रही लगा दी, तब खाली देव सिंहा रही गई, तब देव सिंहा बोला कौड़ी नौकर का मारो कौड़ी के मोल बिकाए ना, बोले हमरे तोरे लड़बे में राज भंग हो जाए, तब वो कहें पटकी सी तब मूड़ काट के बीगी सोकरे दुआरे पर यहाँ महुअर के गिरल, तब महुअर सुखाए गए बोले कि ना, तो बड़ा गजब का ढारिस, तब वहाँ पर यहाँ अब हरदिक राज जौन रहा तब अपन कर ली लोरी और राज ले ली, अब वहाँ के कौड़ी तो ओकर एक स्त्री हुआ पर यहाँ रही जमुनी, तो जमुनी को राज दे के तो फिर चली आई गौरा में, तो वहाँ पर यहाँ ओकर एक लड़का रहा ना, तो 12 दिन बीत गया, तो हेरवा के बेटवा अमर परेवा रहा, तब हेरवा मर गया रहा, तो ओकर बेटवा वही हरावर जा के देखे जोन पकड़ पकड़ टंगरी चीर के बिक गया रहा, तब वो का बोलिस कि भाई का है, तो ओकर मैं काजी ने भी जोन रहे ना, तो बताएं कि एक अहिर चढ़ी आ रहा, तो सब जितना फौज रही सोरा से परवैया बिशनी से परिवार सब टंगरी चीर चीर यहाँ खड़े ही लगा दिया रहा, तो बोले वही खराबर है, तब बोले हरदी राज जोन तुहार रहा तो उन लोरिक अपना ली सी, तो अब वो अमर परेवा हुआ से चढ़ल आपन राज लौटावे के, जब आए लर आपन राज लौटावे तो ओकर महतारी जोन जमुनी रही तो ओके खमिया में बनवा दी, अब बांस कटा के उफाला छिड़वा तो तेल कराही चढ़ा दी, तो वही छिड़के और मारे ना, तब वो जमुनी रोय रोय पाटी लिखे रही कि हमरे राड़री के जो कोई होए कुल में तो हमरे गुहार ला गए, तो जब पाटी भेजिस गौरा के तब पाटी जब पाइस तब ले गए अपने महतारी के नाम ओकरे मजरी रहा, तो मजरी के दिस तो मजरी सोचिस कि अब ही नहीं लड़का है और ई जाई तो हुआ जाई मराए, और एक नाव रहा अब होरिक ई जौन गई है अब होरिक जाई हुआ कहें हरदी में, तो अब होरिक जब पाटी पाए तब होरिक पढ़े ना रहा तो ले गए अपने महतारी देखाई, तब महतारी सोचिस कि ना जहाँ ये पाटी ना सुनी तहाँ चढ़ी वो बहन है लड़का, तब वहाँ पर यहाँ ना बताइस, तब जतरा नगर में भजम घूमिस कोई डर के मारे मजुरी ना बतावे, बोले जो बताए दे मजुरी शराब दे हमार बाल बच्चे भस्म हो गई हैं, डर के मारे कोई ना बताओ है। तो चनैनी एकर उड़ रही वही चनैनी तो लैके गए रहा हरदी में, तब ओकरे लगे लग गई है। तब ओके जब देखाई सी तो अब चनैनी अब रोवे ना, तभी सोचिस कि ना ये बेटवा हमार है, ये बेटवा ओकर एक बार हाल चनारा जी से। तो बोले चल जाई जाई हूँ हमाराय और हमार बेटवा रह जाई चनारा जी तो राज करी है गौरा का दुष्भाव सोचिस ना। तभी बताए दीस रोवे बताओ, बोले कि देख जौन महतारी तुहार है तो वह पर बड़ा मार पड़ा है, तो वही अब सहायता मांगे जो कुल में होए। बोले बड़ी सांसत करे, बोले बाँस छिरवाए गए और पिटवावे है और तेल गर्मवाए के छिड़के है ऊपर में और बारह बरिश के पोत मांगे है माल गुजारी और ना ही तो अहिरे के जल जलमी करी ना और दे कर हुआ कार। तब हिया सती रहा वो पनिया पियो अब उमर पियो अन्न करो गई गऊ के मांस ना बंद के टाए माला ना जीव में पड़े करार। तब यहाँ से गई है तब देवी दुर्गा ओकर सहायता रही। तब दुर्गा के सुमरी तब दुर्गा साथे गई तो बोले कि देख बालक समूह जा निराशन तु जीते भुजो कैलाश तुहे तो निराशन जिंदे पर लिखल है ना, बाकी हियाँ पर तू आर ना पैहो। बोले चलो ओकरे जौन बाप मतारी है पहले हुआ पर यहाँ। तब हुआ गई है तब बड़ी लड़ाई हुआ न्यूरी में भाई है, तब हुआ जतरा रहा तो अब ओकर महतारी जौन परेवा कर रही तो वो पाती लिखी हियाँ के जहाँ ये बंद कटाव के रहा। तब लिखी कि हियाँ तो बोल रहे कि अहिरे के अहिरे ना जे बाघे के अहिरे जइयो, बाकी काना अहिरे के अहिरे ना जइयो। बोले हियाँ बड़ी सांसत मार कर रहे हैं। तब हुआ से आयल हुआ से फिर अब वो छोड़ के आयल हियाँ करे महतारी के लगे अब होरी के लगे आयल बस हियाँ पर यहाँ होकर अब बंद कटाई। तब तो भाग गई ना वो तो चल गई कि आए गई तो चल गई। तमने वो करे महतारी के अपने बंद कटाए के औले आयल। तब पीछे कहे तब हुआ से आयल है तब इंद्रासन ही गई है। दुर्गा बोले कि देख वो नेवरी बड़ा कठिन राज है। बोले वो ओकर माथ है अमर है कोई मारे वाला के ना है। तो बोले तू चल इंद्रासन में तोर माथ हम अमर कराई और ओकर हीन कराई। तब यहाँ से इंद्रासन लग गई है तो सब कहाँ कही था मैंने ठा में ठा यहाँ पहुंची हाल गई है।
0: दोस्तों आज पूरे 153 साल होता है, हमने दिन सीफ तक साल होता है जब हमारा बाप दादा लोग भारत देश छोड़कर सिन्हान देश आए थे। प्रवासी का दिन है, हम सब कहते हैं इमिख्रासी दाख। और मैं कहता था कहने के लिए कि बधाई हो, फिर भी बहुत से लोग हंसी खुशी मनाते हैं, बहुत से लोग दुखी भी है इस बात से। फिर भी हम सब सरनामी हैं।

जब हमारे बाप दादा लोग सर नाम दे साया तो सरकार जो रहा सर नाम का, उन लोग कहते थे कि ये लोग अनपढ़ है, अनखोल्ड मैंस, लेकिन ये बात सही नहीं, नीदरलैंड्स नहीं जानते थे, लेकिन हिंदी बहुत से ज़्यादा लोग हिंदी पढ़ लेते थे और लिख लेते थे भी, फिर भी उनको कहा गया कि ये सब अनखोल्ड है, अनपढ़ लोग है, ये बात सही नहीं है। आप जानते हैं हिंदी भाषा जो है इंडियन में तो यूनिवर्सिटी में भी दिया जाता है। अब की बार मैं चुन के रखा हूँ जय जय श्री राम।

गीता का जन्म हुआ सन्ना में, माता का जन्म हुआ सन्ना में, हमारा जन्म भी सन्ना में हुआ। कैसे आप कह सकते हैं कि सुरनाम हमारा देश नहीं है? सुरनाम हम सबका देश है। और ये नेशनल टेज जो है नीदरलैंड्स, वो तो भी था सन्ना में जब हम लोग रहते थे। तो इस बात पे शर्म मत होना चाहिए। और अब की बार मेरा देश है सुरनाम।

साहब दादा लोग से कहा गया था कि कलकत्ता से 9 घंटा का सफ़र है और एक देश है सुरीनाम देश, जहाँ पर बहुत से काम है, पैसा है वगैरह वगैरह। तो बहुत आप जानते हैं बीते हुए दिनों में कम लोग को बहुत कम काम थे, तो लोग इस बात को मान गया और ये झूठी कहानी जो था 9 घंटा का उसमें विश्वास किया। तो आगे चलकर क्या हुआ कि ये 9 घंटा का कहानी जो था ये 9 घंटा नहीं था लेकिन 90 रोज का, 9 घंटे दाख लला रुख से छूटा है हमारा बाप दादा लोग इंडिया भारत या कलकत्ता से, तो आकर सुरीनाम देश पहुँचा। सुरीनाम जब आया तो सभी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला और 5 साल बाद आपको मौका था वापस जाने को और 100 थ्रिल उन दिनों का 100 रुपये पैसा आपको भी मिलता। तो बहुत से लोग हैं जो वापस चला गया भारत देश और जो सुरीनाम में रुका उन्हें एक टुकड़ा ज़मीन मिला और मदद भी किया गया, तो लोग रुक गए। लेकिन सही बात यह है दोस्तों, ख़ास बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आर्बाइटर जब काम करते थे तो जो बताल में एक बताल मिस्त्र था मिरंदा, तो मिरंदा ये लोगों से कहा कि आप लोगों पैसा घर पर रखते हैं अच्छा बात नहीं, मेरे पास ये पैसा छोड़ो और ब्याज के साथ मैं तुरंत आप सभी को ये पैसा बेतुरंत मिलेगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट का समय जब ख़त्म हुआ तो लोग जब गया उसका दफ्तर पर तो दफ्तर बंद था, मिरंदा भी फर्दवैन एकदम पता न था कहाँ आदमी था। ये भी हुआ है हमारा बाप दादा लोग के साथ।

बातों ही बातों में होना है जो हो जाता है, आंखों ही आंखों में।

दुनिया में लोगों की धोखा कभी हो जाता है। दोस्तों, मान लिया जाए आप अपन प्रीतम या प्रीतमा के साथ सड़क पर चल रहे होंगे, खाली सड़क है, एक फलाते हुए है और बारिश का शुरुआत हो जाता है। आप दोनों के पास सिर्फ एक पारापली, सिर्फ एक छतरी है। क्या आप करेंगे? दोनों जाकर छतरी के नीचे खड़े हो जाएंगे। ये तो हकीकत है, वास्तव में ये काम आप जरूर करेंगे। लेकिन जब बारिश ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है? आप फिर दूसर बगल, वो भी दूसर बगल। तो वो समय जो आप छतरी के नीचे खड़े होते हैं, बारिश होता है, तो आप सिर्फ दुआ मांगते होंगे कि बारिश हमेशा होता रहे और हम दोनों हमेशा साथ खड़े रहे। ये भी, ये बात में भी कुछ मजा है दोस्तों।

नरम अंदाज का सॉन्ग भी आप सुनेंगे, हम आज कहीं दिल खो बैठे, माइटी मुकेश के आवाज में आप गीत सुनेंगे। इस फिल्म में दिलीप कुमार, नरगिस और साथ साथ राज कपूर भी इस फिल्म में काम किया। दोस्तों, इसी फिल्म के शूटिंग के समय राज कपूर नरगिस से प्यार हो गया है दोनों में, और ये दोनों का प्यार बहुत दिन तक जारी था। साथ ही साथ ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राज कपूर शादीशुदा था कृष्णा से, राज कपूर का शादी हो गए थे, तो इसलिए नरगिस का माता पिता नहीं चाहते थे कि नरगिस आगे चलकर राज कपूर के साथ प्रेम करे। तो आगे में चलकर नरगिस का शादी तो सुनील दत्त के साथ हो गया, लेकिन राज कपूर दोस्तों न सिर्फ नरगिस, पद्मिनी के साथ भी प्यार मोहब्बत किया। उसके बाद विजयंती माला, साथ ही साथ हेमा मालिनी के साथ भी राज कपूर प्यार और मोहब्बत किया। फिल्म अंदाज का सॉन्ग आप सुनेंगे। दिलीप कुमार ये गीत दिल के बाद पियानो के साथ आपको सुनाएगा।

0: देवानंद, देवानंद भी एक टॉप एक्टर था दोस्तों, और बहुत दिनों तक फिल्मों में काम किया। आप जानते हैं देवानंद दीवाना था सिन्नत अमन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों में प्यार मोहब्बत था। लेकिन एक दिन के बाद है, देवानंद ताज होटल में सिन्नत अमन के साथ खाना खा रहे थे, तो उसी समय राज कपूर वहाँ पहुँचा, और राज कपूर ने थोड़ा से नशे में थे और जाकर पीछे से सिन्नत अमन को पकड़ लिया। तो ये बात देवानंद को अच्छा नहीं लगा, तो उही दिनों से, उसी वक्त से देवानंद और सिन्नत अमन दोनों में प्रॉब्लम हो गया। ये भी होता रहता है दोस्तों। लेकिन राज कपूर, जैसे मैंने कहा, कई फिल्म एक्ट्रेस के साथ प्यार मोहब्बत की, उनका समय था उन दिनों में। और राज कपूर के बाद भी बहुत से फिल्म एक्टर्स हैं इन दिनों में, तो चलता फिरता रहता है फिल्म दुनिया में। आज शादी, कल जुदाई, उसके बाद फिर शादी, फिर जुदाई, वो होता रहता है। लेकिन फिल्मी दुनिया में बहुत से होता है।
1: राजा

ओ मेरे राजा, ओ मेरे रानी। दोस्तों वैसे दिलीप कुमार भी सारा बानू से शायरी की, लेकिन उससे पहले मधुबाला का ऊपर दीवाना था। ये दोनों में प्यार मोहब्बत चलता फिरता था, लेकिन बात यह है कि दिलीप कुमार एक बार गुस्से में आकर मधुबाला का पिता को एक डकैतहातर कह दिया। तो पिता ने कहा दिलीप साहब को चाहिए माफ़ी मांगने को, लेकिन दिलीप ने कहा मैं माफ़ी नहीं लूँगा। तो आगे चलकर मधुबाला ने शादी किशोर कुमार से कर ली।

कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू के आवाज में मैं एक गीत को पेश करूंगा। दोस्तों, आप सभी को मानना चाहिए कि कुमार सानू को वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में उनका नाम लिखा गया, इसलिए कि कुमार सानू ने 28 गीत एक रोज में बनाया। दोस्तों, एक रोज में 28 नगमे सॉन्ग्स पेश किया है, ये एक रिकॉर्ड है, एक दूसरा गायक ये काम नहीं किया है। तो सानू के आवाज़ में मैं आपके सीने में

मेरे महबूबा बहुत प्यार आया है तुम पे, पन्ना श्री उदित नारायण एंड श्रिया गोसाल, नदीम श्रवण का लिखा हुआ गीत है। दोस्तों मैंने अभी कहा नदीम श्रवण ने गीत को लिखा, लेकिन जब गीत एक गीत तैयार होता है तो उसका शुरुआत एक राइटर एक स्क्राइफर जो गीत लिखते हैं वहाँ से गीत का शुरुआत होता है। लोग कहते हैं कि राफी ने गीत बहुत अच्छा से गाया, मुकेश ने गीत अच्छा से गाया, ये लोग प्राइस पाए जाते, लोग तफोरी पीते, लेकिन जो लोग ये गीत लिखते हैं, जो कलाकार ये गीत लिखते हैं सोच समझ के, कई रोज लगता है, कई घंटे में ये गीत लिखते हैं, तो उसका तारीफ बहुत कम होता है। मैं सोचता हूँ आने वाले दिनों में ये म्यूजिक सॉन्ग राइटर्स जो है उनके बारे में कुछ बातचीत जरूर करूँगा।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दरबार गीत ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत जिन्हें हम भूलना चाहे, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

खुशी, खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

जब तुम पास थे तो हरदम यही जब तुम पास थे तो हरदम यही सोचता था कि तेरी कदर नहीं करता। और आज जब तुम मेरे पास नहीं तो एहसास होती है कदर हमेशा से थी मगर तुझे ना खोने के यकीन ने अंधा किया था।

कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं मेरे इस दुनिया में के बाद अब की बार तेरे दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले माइटी मुकेश।

0: गया हुआ तेरे और दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है।
1: दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला
0: फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो किससे कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 2 फिर से 5 पर आप तार कर सकते हैं।

0: ही ना रहे हम महका करेंगे। आरंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज के प्रोग्राम में अमरीश पुरी के बारे में कुछ बातचीत होगा।
1: सिर्फ दिल की जमी है याद हमको।
0: अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1928 लाहौर पंजाब में हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल सिंह पुरी। अमरीश पुरी एक बेस्ट विलियन एक्टर के अलावा अच्छे रोल भी करते थे। वो शेखर कपूर का की फिल्म हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो के नाम से बहुत मशहूर हुई। ये फिल्म जो नीलकंठ सिंह तख्तक में बनी थी, और इसमें अनिल कपूर का होफ रोल था। अमरीश पुरी यानी शास्त्रक में इंडियन थिएटर्स में काम का शुरुआत किया। उस वक्त वो सचदेव और गिरीश कर्नत के साथ भी काम करते थे। अमरीश पुरी एक वेस्टर्न फिल्म जो निकली फिरन तख्तक में बना था वो स्टेफन स्पीगलबर्ग का इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डून। इस फिल्म में अमरीश पुरी का नाम मोला राम था। अमरीश पुरी भी फिल्म बादल में काम किया। उस फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूंगा।

अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के भाइयों भी एक्टर थे, जैसे चमन सिंह पुरी और मदन पुरी, और एक छोटा भाई जिनका नाम हरीश पुरी, और एक बड़ी बहन जिनका नाम थी चंद्रा कंटा। अमरीश पुरी शिमला के बीएम कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपना पढ़ाई किया। अमरीश पुरी की शादी नहीं स्टीफन फेस्टिक में अर्मिला देवी के साथ हुई, और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम रजीव और बेटी के नाम नम्रता। अमरीश पुरी बाद में बॉम्बे आया, जहाँ इनके भाइयों फिल्मों में काम करते थे, और ये भी उन्हीं के तरह भी फिल्म एक्टर बनना चाहता था। अमरीश पुरी एक स्क्रीन टेस्ट के बाद नौकरी किया स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। उसी वक्त ये पृथ्वी थिएटर्स में एक नाटक में भाग लिया और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। निगरिंग सीफन तक के बात है। अमरीश पुरी ने फिल्म साधना सरगम का और अमित कुमार का सॉन्ग है, और फिल्म सपना का एक सॉन्ग, दोस्तों एक ओल्ड सॉन्ग है, और जिसमें नया भी मिलाया गया है। खुद सुनिए आप।

अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जब 40 साल के थे तो अमरीश पुरी ने अनेक फिल्मों में एक्ट किया, जैसे हिंदी फिल्में, कनाडा, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयाली, तेलुगू और तमिल फिल्मों में भी अमरीश पुरी काम किया। अमरीश पुरी बॉलीवुड सिनेमा में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी रोजाना दोस्तों उसका एक काम था, लगभग 2 या 3 घंटे तक अपन आवाज़ का प्रैक्टिस करता था। उसका आवाज़ जो है आप जानते हैं अमरीश पुरी का एक अहला, एक अलहदा, एक अपर्त आवाज़ थे, और ये आवाज़ वो हमेशा रोकने के लिए 2 या 3 घंटे तक प्रैक्टिस उन्हें उफन करते थे। अमरीश पुरी इसे तो कई अवार्ड भी पाया। निजी एक्टर शास्त्रक में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉरपोरेशन अवार्ड पाया, और भी और ज़्यादा अवार्ड अमरीश पुरी ने पाया। एक सॉन्ग के बाद मैं आपसे और अवार्ड का नाम लूँगा। फिल्म करण अर्जुन का सॉन्ग है जिसमें अमरीश पुरी जोर तोर से काम किया।

Nigentin 79 में अमरीश पुरी थिएटर संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। उसके बाद 1976 में फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म मेरे जुंग में। नीघंतिंग इन निहित महाराष्ट्र स्टेट गौरव पुरस्कार अवार्ड पाया। नीघंतिक में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म घातक में। निधि अख्तर नीखन के फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड पाया फिल्म विरासत में। नीघंतिक द्री नीघंतक में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मुस्कुराहट में। नहीं फिल्म नहीं तक में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म गर्दिश में। नहीं सेशन नहीं तक के बाद है जब फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड पाया फिल्म करण अर्जुन में। नहीं तक में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म कोयला में। उसके बाद तुय जैसन तुय में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा। दुख के बात यह है दोस्तों कि अमरीश पुरी का मृत्यु नीघंतिंग नहीं नहीं 12 जनवरी 2005 को बॉम्बई महाराष्ट्र इंडिया में 72 साल के आयु में हुई। पत्नी इर्मिला देविकार और बेटा बेटी रजीव और नम्रता को पीछे छोड़कर चले गए। अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है लेकिन अमरीश पुरी का नाम जब फिल्मी दुनिया का नाम लिया जाएगा तो अमरीश पुरी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा।

0: सुनो सुनो ए भाई और बहनो,
1: हाय हाय सुनो सुनो भाई बहनो,
0: जनरल सिंह। अरे तुझे भी सुनो पापे।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी हाजिर बांधे। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम से श्रीकाल है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज की देश विदेश की समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों हम आ गए हैं आज है शुक्रवार। शुक्रवार यानी फ्राइडे है। आज तो समाचार सुनाने के हमारा काम है। और आज शुक्रवार फेफ यूनी हिंदुस्तान से एमी खरासी दाखे में से। और आज हिंदुस्तानी हम लोग के 100 बरिस हबड़ा हुई ये है। अभी आप इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हमारे जो पूर्वजों है, हमारे बाम दादा जो भारत देश से छोड़कर आज श्रीनाम में गए थे, आज उसका जन्म है, यानी कि एमी खरासी दाख है। इसके बारे में अभी आप लोग को हम बताएंगे। तो दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी आप लोग को हम सूरीनाम नाच और देश के समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे। समाचार कभी कभी मीठे है, कभी कभी खट्टे है। और आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है हमारी यारो। तो हम तुरंत चलते हैं। और कहाँ चलते हैं? वातरकान सूरीनाम की ओर। हमारी जनता सूरीनाम में भैया मुसीबत एक अभी नहीं रुकता है, तो दूसरा मुसीबत आ जाता है। दूसरा अभी नहीं उपलोसद होता है तो तीसरा मुसीबत आ जाता है। तो मुसीबत के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम हमारे देश पे बस छा ही रहती है हमारे जनता। और सबसे पहला प्रॉब्लम ये भैया, बारिश वहाँ पर थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। बारिश के मौसम बहुत ज़्यादा है, यानी कि बूढ़ा सूरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है भैया। आदमी लोग को हम जिस सोशल मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, तो आदमी लोग के हमारे जनता के घर में पानी और पानी चल गया है। लेडन देखो, वनिका देखो भैया, और परमारिबो सेल्फ इस ओंदर वाटर हील माल ब्लॉक में से। और जनता लोन के हम काम बोली बहुत दुख में है, मुसीबत में है। लेकिन तो पानी दोस्तों, साथे साथ पानी के साथ में वहाँ पर भैया स्टॉकिंग होता है। तो राजा अयोध्या भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में, जुड़ गए हैं। तो राजा साहब आपके राजा साहेब आपको हम यहाँ से बहुत दुलार और प्यार देखते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक के माध्यम से धर्मेंद्र श्री भी आ गया है। तो धर्मेंद्र, बारिश के मौसम लंगडाम पेना सूरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है। लेकिन न खाली बारिश भैया, स्टॉकिंग सूरीनाम में डेमोस्ट्रेशन के तरह भैया, स्कूल के जितना यूफ्राउ मिस्टर रहा वो सब स्टॉकिंग कर ले रहा। कारण कि वो सबके पैसा ना ऑफर हो करत रहा था, अब पैसा मिलल है तो स्कूलिया अब शुरू करी। इधर जब स्कूल शुरू भेल है तब शुरू करी से पुलिसी स्टॉकिंग मांगे करे भैया, डेमोस्ट्रेट करे मांगे हैं, स्टॉकिंग मांगे करे, ओहो सब मांगे अपन लोन्स फॉर हुकिंग मांगे हैं। अब ऊ ना शुरू भेल भैया, अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो सूरीनाम के हैं अब ऊ सब मांगे हैं आक्सी करे भैया। यहाँ पर लिखा है पर्सनल सेंट्रल बैंक फुट आक्सी ना एट ब्लाई फॉर रियाक्सी फंड मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट रियाक्सी ना दे सब मांगे आक्षी
साक्षी करे। और सेंट्रल बैंक भैया जहाँ पे हम लोग के पूरा सूरीनाम के खजांची है, वही सेंट्रल बैंक के त्रिक लूटे रहा, हुफद्रार लूटे रहा, सूरीनाम से पोस्पार बैंक के क्रोमो लूटे रहा। तो हम लोग तरी से कभी कभी आप लोग को बता दी कि तुम लोग के याद रहे, ना भूलियो जा कि के कौन ची करी से हम लोग के देश में। तो वही सेंट्रल बैंक बातचीत हो रहा है राजा साहेब। तो अब सेंट्रल बैंक सूरीनाम के 5 तारीख यूनी 2017 तक के सेंट्रल बैंक के कम करतन जो है 8:30 बजे सब बैलकार आए ले गो प्लेंचे पे, और फंड बैंक के प्लेन चप आए ले और सब हुआ पे अब्बा और बोले हैगा आन दाख फ्राग फोर सोरखन फ्राखन सिनियाल इन फन मी द वर्कर्स ओवर द हेर सिन द फिंगसी है इसके बारे में यहाँ जा रहा है। और बोले हेड बस्तूर नुम द एट ब्लाइव फन फान रियाक्सी तलूर स्टेलन एंड सेक द ऑन्टविकलिंग नो लेतन द ब्लाइव फन फोलखन। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो हम बोली 5 तारीख यूनी हिंदुस्तान से एमी खराची के बारे में हंड्रियन फेफ तक यार 153 हाँ हंड्रियन फेफ तक यार हो गया है सूरीनाम देश में बहुत बहुत यानी कि अन अक्तिफित है। यहाँ दनहाख में भी अक्तिफित रहा होबामार प्लेन पे म्यूजिक बजल है और याद भैल है हमारे जोन बाब दादा पूर्व जो 5 तारीख यूनिक के कॉन्ट्रैक्ट और बेदस जो लाला रुख पे नहीं अख्तिन होंद द्रियन सीफन तक में सूरीनाम में गई है। तो वहाँ के यानी 5 तारीख यूनिक के उसको याद करते हैं होंद द्रियन फाइव तक यार हो गया है। तो बताओ और खान शांसी वैस एरोप दद इस्त हिंदुस्तान से एमी खराची जो रहा बोले हैगा ऑन बेरिंग इन ऑन टीकर है एन उद्दाखिंग फन बलांगरेक बैदराखन हैवर गलीवर अन द इकोनॉमी सोशल एंड कल्चरल ऑन्टविकलिंग इन ओसलान सूरीनाम में से दौर कस के काम करे के डिसिप्लिन रहा सबके दौर से तस्फर मौका रहा। तो जितना अभी हमारे उदर है आप लोग को बाप दादा हमार तो नानी रहा मेरे ख्याल से नानी नाना भारत देश से आयल हा उसको हम नहीं जानते दोस्तों। तो ये सब तो भारत देश के रहा। तो बताए गए रे बाबा माई मोन्यूमेंटल लगे सब गईल है न्यू आम्स्टरडम कॉमोवेन में सरमक्का खरोडिंगर पे गईल है निकेरी में सब भी गईल है और वहाँ पर सब जाकर और वहाँ पर हरदाख कर लेबा हम लोग के एमी खराची के बारे में इसके गीत अभी आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारी जनता हम और आगे चलते हैं सूरीनाम के ओर। हाँ तो आप लोग जानो हैं ओएएस के बोले ओ मिनिस्टर मेल्विन बोवा बैतलान से साकर के बोले हैं का ओएएस में जो सेक्रेटरी जनरल हम लोग के अल्बर्ट राम दे रहा पहले फिर हपी के तहत पे वो रहा मिनिस्टर फन बैतलान से साकर के उचल गए फिर ओएएस के सेक्रेटरी से बड़कवा हुआ के भैया। तो बताई गई है कि वहां पर बोले उकर बारे में अंदर सुख होवे हैगा फोकस भविष्यवान वक्त रखेरिंग इज द आउटकम फॉर अ मुखलक अंदर सुख अप फॉर दैट डेफिनेटिव स्टैंड फिट वर्क नोमन द बाउ फॉल ऑन खाली अगोरे है कि कब ये नमिया के बारे में छानबीन हुए। तो बतावे है मिनिस्टर बोले बनाद्र करी दैट नीट इन सूरीनाम इज ऑन फर्स्ट सेल एंड वाज द फेटलक वार है इज इन द क्वेस्टी फोकस हेम साल इवेंचुअल अंडरसुक मुतर ऑफवेशन ई है रामदीन के बारे में अंडरसुक हुए हुआ एस में बताई गई है वीस एरोप द रिक्वेस्टी ओक अंडर और दिस को तेरे में से रेसेंसी फरकादरी। तो हम बोले छोटा रूप में इसको हम बता दे भैया बहुत घींचा तानी असेंबली में हुए है तो लोन जाने हैं स्ट्रफ रेखलक जो से बन मांगे हैं ओ एम अरे ओ एम पठाई से गा काने के अने दे नामे कि के हम लोन के माख है फरोरदेल करके ऑंडर सुख करे के बारे में बेकर बारे में बराइत हम आप लोग को बताएंगे हमारे जनता की तोरिया कैसे हैं।
तो यहाँ भी एनडीपी का बोले है फरहाल फन हु वे सामन सुरिनाम वर्धन हिंदुस्तान से मिखराची के बोले है न्यू हुफ्स तो के नखफसी ने तो ये भी एनडीपी भी एकर बारे में बतावे है दोस्तों। साथ ही साथ हम चलते हैं और चलते हैं मेलक ब्लास्टिंग लंद भैया हम लोग के ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा भरे के परे है यहाँ पर नीदरलैंड में तो के बोले है ब्लास्टिंग कु भैया हाँ गाई ब्लास्टिंग कु के बारे में यहाँ पे बताए गए है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो गीता जी भी आ गए है ये कौन गीता है ये गीता बिहारी है हमारे जनता। तो गीता बिहारी आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में गीता जी। तो हमारे जनता हम और जा आगे चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर। तो बैंक के बारे में तो अभी आप लोग को हम बताए थे सेंट्रल बैंक में क्या हुआ क्या ना हुआ। तो साथ ही साथ और समाचार यहाँ पर है दोस्तों जो आप लोग को हम जरूर बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं होता है हमारे सूरीनाम में। अब देखो भाई

सिपाही के घर सब इतना विरोह के बीच मचे कानी कितना देन यानी कि क्विक चोरी होई गए भैया। हाँ कितना क्विक चोरी होई गए देशवा मचे। ये बड़ी बहुत आफत के बात है कि जोन अनमिया जहाँ पे सोचियो हमारे चीज से फैलक है बस वो ही मचे चोरी है चोरी है। तो सिपाही के मीजे वर्क से भैले कि ना भैले भैया ये तो 100% है। सिपाही यहाँ पे 24 घंटा ने बड़का कंटेनर में भैया उतना ढेर क्विक चोरी हुई गई एक बारे में देना में सब खोज बीन बहुत ज्यादा कर ले रहा। और यहाँ टोनी इसरी भी आ गया है तो तीन लोग जो हैगा पार्लियामेंट के ओकर लगे देना के लगे ओएम यानी कि पीकी पठाई से ब्रीफी की बोली से तुलों बताओ कि इतीन अदमिया के तुलों तू स्टेमिंग हम लोग के देवे की ओंडर सुख करी सकवा के ना। और इतीन अदमिया के भैया हुफद्रात है क्लीम और हुफद्रात एक मिनिस्टर फन बहुता के तेज पे तो अभी तक फरार है। रियाद नूर मोहम्मद ओवे के राफे या पे के तेज और बुरंतो सोमो हार्ज मिनिस्ट्री फन बहुता लांस साके के तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भैले भैया दे नामे। और घीचा तानी यही बल वही में और का बोले हैगा इंटरव्यू पे बताई सेगा यानी कि अने अने अने गया दिन बोली से बोले एनडीपी ना मांगे सखवा अंदर सुख होवे बोले उन ना मांगे कि ओपन बार में होवे एनडीपी बोले चोरवन के बचावे है बोले जैसे पहले बचाए रहा कि हुफद्रात हुफद्रात भग्य है बोले उस सब चीजों ने करे है। मैं ऐन लग इफर खदरिंग हुआ इतना क्रासी गए ले भैया कि दे या ना में गए है सब। और हम सब फॉलो कर ले भाई कि हुआ पे कैसे किस टाइम करी सेगा देना में कि इस फरफोलक कोई हुई कि ना होगा एकर बारे में बहुत घीचा तानी भइल है। तो एंड ओकर रिजल्ट ई भइल भैया कि इस सप्त देना के नूर मोहम्मद हुफद्रात और समोहार्ज इंस्टाट फन बस्किल किंग हुई गए है। अब ओएम के माख है इस सब के अंदर सुख करे के खरोत देश अदमीरों जो नया नाम है उस सब स्टेम करी सेगा कि स्टार्ट बस्किल किंग में सोमो हार्जो और काबुल हुफद्रात और नूर मोहम्मद के स्टार्ट फन बस्किल किंग स्टेल कर सके ओएम के चाहे जाई के इस सब के अंदर सुख करी कैसे है तो कौन ची चोरी कर ले कौन ची ना चोरी कर ले है। तो जो नेशनल असेंबली से नाम है दोंदर दाख के द फोर्डरिंग फन द पीके बहांदल करी से ओम खवेसन पॉलिटिक अमतनारन तीनों ने मुआ जो ले दी है सबके यहीं जाई के अब onderzoek ke NDP werden vragen gesteld over de volledigheid van het dossier. NDP bole hem na mangela ekar bare mein batiya bole hem mangela volledig dossier hue waarvan gaya din aur anamien bole to ke na hufte sab bole tu onderzoek thoro bate tu pehe na bate bole pehe je to ke kagaj pathais ke damiya kha mangela tor admik denan mein onderzoek kare on da tu kuch kari se ta hamar kaam na sab ke farur dil ke hum log ke kaam hai तो स्टेमिंग देवे के पीके के ओएम के रेक्टर के काम है बपाल करे के तो मर्डर है एनलक toch opgelukt mensen, heel veel mensen zijn opgelukt, die zag wat onderzoek hoi, niet een mooi iets is op deze loot loot chori kar kar, en mouch kare hai bhaiya, to VHP, NPS, BEP, ABOP en A20 benadrukten juist DNA ke, ki rechtbank is niet बोले कि खींद रेख बैंक है बोले देना बोले रेख बैंक ना है देना इस खींद रेख बैंक एंड नीट हुफ्त ओर दिल ओवर द स्किल ऑफ अनस्किल फॉल्स दिस फ्रैक्सी मुद अनफाल का रेक्टर एंडिंग में एकर बारे में बोले के और एनडीपी चोरवन के खाली बचावे भैया चोरवन के खाली बचावे है तो नहीं कि एके ना करते एके ना करते एके ना कर आज चोर लोग के बचावत बचावत हम लोग के देश बर्बाद हो गए। अब वही प्लटवा
सब द्राई करे हैं, तो फरप्लेख ना रहा कि सब कोई के चाहत रहा हाथ उठावे कि तेईका बाटे कि ना, जे ना मांगत रहा उ साल छोड़ के ओके चाहत रहा चल जाए कि तह फोर से तर अश्विन अधीन छोड़ के साल चल गए भैया। बोले हम ना बैठब कुर्सी पे, एगो फोर से वार दी मन फोर से बोले जा तू बोर दिल कर, बोले हेगा असेंबली के फर्दरिंग फन पे ही तो

0: In staat van beschuldiging stellen van 3 voormalige politieke ambtenaren. Daarin is voldaan bij wettelijke vereisten op grond van artikel 140. Grondwet in staat van de beschuldiging stellen van politieke ambtsdrager in de WIPA en kan de openbare minister strafrechtelijk onderzoek voorzetten. Dit is dus een hele goede nieuws, mensen. Ki op kabule hega OM Freiba. Ik er waren mee. Onderzoek krijgen waarin de PG John heeft hem ook in Suriname ke straflechtige onderzoeken kunnen verder naar de besluit van TNA. De eker waarin een PG hem ook in Japan apart betaalde die op Oesabjaasabke onderzoek kreeg ingestemd met de vordering van de PG. Op betaalde hij gaat oud-minister Klimmer Hoofdraad Openbare Werken Nationale Noor Mohammed ke. Of Noor Mohammed ke baat met Brunto Somo Harjoke. Of Janiki Sapke de vordering van de PG werden op 9 maart 2026 bij DNA ingediend na de behandeling van de verzoeken. Deze week stemde het parlement in met 3 vorderingen. Daarmee is volgens het OM voldaan van de vereisten van artikel 140 van de grondwet. Toen hebben we aanplokken hem. Chota roep me bataai. Kisakwa kaise hai hamare janta. Hamare piare piare janta. Toen ijoon malai hebben we ontdekt. Bhaiya bahut jor छटकट कूदत रहा तो अब एहू तरी रिस्ट हुई है और बोले उल्टा पूजा ने सब कोई मेर दर है तो के बस्कुल दख कर दे तो ही आप रे बोली से का नीमा स्टार बोफन हेड फॉलक ओ ब्रोंटो नीत तो बोले हैगा अब इस अफोकार ले के अपन साख लड़िए पेल असेंबली फोर्सेटर एन असेंबली लेट और सोमो हार्जो पाउल सोमो ब्रोंटो सोमो हार्जो eist een eigen staat van beschuldiging instellen. Apreu op teken kan deze keer mag je, oké? Want u jane akeel u thoro boliga ki hemme na maktul ke onderzoek kare. Grote deels boli sega ki sabke chahi onderzoek hove ke. Ta apro teken kan deze keer haan. Chahi onderzoek hove ke. To dusso Suriname ke duane bhaiya ab dekho tamasa kaun chakallas bhai la bhai. कौन चक्कल एगो औरत के भैया एगो औरत है दुआने मेजर वर्कर भैया फर्राज भैले फ्रॉ केयर ट्रिक फन फकांसी एगो औरत फकांसी से लौटल भैया कहाँ गैला लौट के तो भैया सुंदर हीरा आपको भी हम बहुत स्वागत करते हैं और सबको बधाई देते हैं हमारा हिंदुस्तानी के इमिग्रेसी के जोन आज जोन 5 यूनिक के होंद 3 और 5 तक यार भैल है तो आपको भी बधाई है जितने हमारा हिंदुस्तानी है रेडियो फाहुन के माध्यम से आप सबको हम बधाई देते हैं तो यहाँ भैया दुआने भैया फर्रास हो गए कि औरत गई ले फकांसी से और फकांसी से लौट के आए ले भैया ते का लाई से औरतिया सब कोई भाई हम लोग सुरीनाम से आयला ते का बोले मछरी लाएला भाई मछरी लाएला कड़ाबू लाएला अब ई औरतिया गैला फकांसी से भैया Ego Zwitserland, dit is wat een vrouw in de Zwitserse plaats Taing deze weekdag. Douane had er even druk mee bejaan. Douane medewerkers doorgaan bij de grensovergang van Taing. Boudoir ke ego bestel busje. Ujjar aile hai. Ze wilden weten wat de chauffeur die terugkwam van de vakantie vervoerde. Bole kontje laise. Bole de vrouw in het busje gaf daar gehoor aan en begon haar bagage uit te pakken. Suruk kari se apan bagage uitpakken. Beswama se bhaiya. 55 koffer leke aile hai. Bhai vakantie se lautal hai. Ab boliye ka dharis bhaiya. Duane bole ab kaun chakallasi bhaile. De een na de andere koffers kwamen uit de voertuig, maar liefst 55 koffers in totaal. De douanemedewerkers schenden ze allemaal en troffen niets geks aan. Ze bevatten diverse persoonlijke spullen, zegt een woordvoerder van de Zwitserse Federaal Bureau van de Douane. De douane in Zwitserland gebaat, is zijn naam gebaat, na Jeske Polke. Er was niks om bezwaar tegen te maken. Het is over een algemeen. algemeen ook niet verboden, mensen. Toen zei hij, ik ga daar leek een je. Koffer na zo'n 20 minuten was de situatie afgehandeld. Dit soort dingen horen van de dagelijkse routine van de bakkie 55 koffer. Ja, hare da, kaise i dhoi hoi, of kaise i leegi hoi. Hamare bjaan janta, teri socho, 55 koffer is niet hier, mensen. तो हम चलते हैं और आगे हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा मीठा मीठा जनता। तो अब देखा जाए यहां बातचीत क्या हो रहा है। बातचीत क्या हो रहा है ओएम के बारे में तो हम आप लोग को बता चुका है, लेकिन और बात आप लोग को हम यहां बताई भैया। एगो देर तक यार के आदमी गैल है बौश बरख पे। हाँ, बौश बरख तो लोग जानो भैया, ओकर नाम हम दल्ली बाटी सेल्फ मोर्त बरख। हाँ, सेल्फ मोर्त बरेको का नाम चाहिए। ये ही देखो भैया, जैसे स्वयं बात में झड़ांग लगावे भैया, हीरा जा टप से कूद जाए कभी ना निकल के आवे बहरे। तो ऐसे को देर तक यार के आदमी गैल है भैया बौश ब्रेक पे। तो हुआ से टेलीफोन करे है और कैसे कैमरा से टेलीफोन करे है ना बौश ब्रेक में से कि अब हम जाइला कूदे, हम जाइला कूदे भैया अपन फैमिली लेट से। Het net verneem dat de familie de Surinaamse politie over voorval heeft geïnformeerd. Ook betaalde je een raad ke baantjeet hem. Werd gebeld via een videogesprek tijdens dat gesprek. Ik betaalde je een bosje brug per se. Bole hem jaila koede. Bole de kiotolo keisem koede la. To TikTok banavatra. Bhaiya live jatra koede. Kort na deze melding werd de verbinding verbroken. Bole verbinding wat broek. और से यरमिया ना भेटा ने भैया कोई के ना मिलल है। सेस दिन इस खीन को तक मेरे खबीज में ने बेम तो फर्मूडलक इस दे समान नतुल इन हेत वातर गस्प्रोंगन में मेंसे। हम जाई तेरी फानत होकर हैस्त्रात के बारे में बहुत भैया आफद मचले। सरना में जोन में सरना में गाड़ी चलावे हैं आपके तो पता रास्ता वहां में भैया हम का बोली जैसे काऊ फूटू होइगे आसफाल में काऊ फूटू जैसे होइगे भैया। मां काऊ फूटू में तो अब तो गोड़ घुसी निकल जाई इतना भारी भारी गढ़ा और बुड़ल है भाई। स्लांगन हौस्त्रात के बीच में फनो होकर हैस्त्रात कि आदमी बड़का बड़का ओतो लेके गढ़ा में घुल जाए। जो समय पे फिर यहाँ पे रहा भी ये प्रॉब्लम हुआ रहा तो ये रखे रिंग हुआ लोन क्लाख करत रहा भैया। अब वो ही के रखे रिंग में इतना बड़का चकल्लस हुए हैं। अब जनता उल्टे गरियावे हैं एनडीपी के रखे रिंग के तुतुलों कोंची करे हैं। तो यहाँ बताई गई इतना भारी भारी घरता खदेट लग ऑन कपे 150 मीटर। अब बोलेगा स्लेक्ट टू स्कान फन द वेग द अफलोपन प्रियोड अब इसे मांगे हैगा फन ढोकर बहुत तो दृष्ट बरीदन वीकन उतरा ओतो हुआ चले फन रोका हिस्ट्रात में। और उसे मांगे 4 तारीख यूनी के 4 बजे वो 6 बजे लेक मांगे बंद करे टुक्का और एक टुक्का मांगे सेवन असफाल तेर करे भैया। वही बात है वेर बुरुकू और पूर बुरुकू हम लोग निगरे में बोली ना वेर बुरुकू चपटावे भैया सुंदर भाई। जैसे कि कोई जब ढोल बजावे और उंगली कट जा है तो ऊपर प्लेस्टर लगा देवे है ढोलिया दोरो बजाए कमुआ बन जा है। तो घरवा जाए तो तेलो लगाए के हथुआ अच्छा करे है ना। और जो नदमी नाचे भैया जूता कभी फट गए तो गोड़ में झलका पड़ जा है। तो उस समय पे मोटा सौकों को पहर के अच्छा करे ऐसे भारी भारी गढ़ा है तो सबन चटावे भैया। जैसे चिड़ई हगे है चारों बगल वैसे सेवन आसफाल चटाई के और आदमी के आंखी में धूल डाल दे देख हम बना देली बाटी। तो ई सब बात बाकी कोई ना है कि चीजों खूब जोर तोड़ से फॉर ऑल टाइट ओके permanent helemaal asfalteren करके और हमारा ऐसा नाम के फनहू को हैस्ट्रात बना देवे हैं तो सैफ बे से चित्रा अवतार भी आएंगे हैं तो वहां पर सैफ बे की फिल्म हमने देखा है पानी भैया डैम से ई पार से ऊ पार जा है और आदमी लोग के घर में पानी कंडाल में भी चल गए हैं आदमी लोग के वनिका से बुड़ल है आज की हालत कैसे है ये हमें मालूम ना है लेकिन काल के हाल कल के हाल तो यही था जो हमने देखा है तो भैया एक आदमी है सेफरन ट्विन तक या रखे एक आदमी भैया हाँ यहाँ बताई गई है बुधवार के ई गैले गो रास्ता का नाम बा पीका दोस्त्रात और अनामुस्त्रात में वहाँ गैल है भैया जब हुआ गए ले पिकादू स्त्रांत में तो बताए गए हैं वहाँ पे एगो त्योता फित स्त्रां भाए और बोले वहाँ पे दकते गए ले वैसाख है दाद फर मुडलकस के तो सामन में अंदर खराई से तो फत्रोक इंदर एकते हैं तुर तोलाना दग उल भैया भैया एगो बार में तो मैं ही कहिला बार और हम तो न जाए इस नाम में स्कोटन खलोस बे बार हिल्स को फोनर ऑफ पार्कियर टेरेन तो सुरिनाम इज अनफेलिग मेंस बार और में ना जाइयो हम में भी एक मनिए ठंडा भी रहना तो अपन घरिए मंगइयो भैया ठंडा ठंडा पार वो बीर और ओके खूब नचस से घरे पियो बाका करियो बाका करियो वेत वेती मछरी बाका करियो और करोड़ करोड़ ही मरियो ठंडा ठंडा भी धरियो और धरियो भैया धरियो बैठक गाना पाचे में और झकझक झकझक बजे है दन हैप्पी हिल मालखिन प्रॉब्लम बाकी अपन लोहवन ताला कर दी हो भाई वन असाय तो चोरवन भैया घरवे माई के लूटले है परसिये माई के लूटले वे है दिस ओहुच युवा बचाई के रही है श्री नाम के हम नासिला वार हेड बताइला अब देखो भैया मिनिस्टर फान मिनिस्टर के हम बोली ला मिनिस्टर के बोले ला मिसी काबा फॉलोस कोसों थेट के अभी का बोले भैया सुरिनाम में सिस्टर सिस्टर भैया ना है सब खोजे फर प्लीक कुंद खके तो मिसी काबा का बोले फॉलोस कोसों थेट के अब उ का करीगा हुए के आदमी लोग के अपन कोस्ट पे मतलब लांटी के कोस्ट पे अपलाइडिंग देगा बोले ढेर बोले दुनिया भर पे खफराख फर प्लीक कुंद के तब बोले जेके हम लोग लेस देबे तो के फर प्लीक के पांच छह बरिस फर प्लेक है सर नाम में काम करो कर बाद में मंगी बैचलान तो अपन जाए के काम कर सके है अंदरी मिसी काबा के प्लान है भैया इसे देश चली ना कि अपन सिस्टर के उस सबके मुँह से पकड़ ले रू मांगे उस सबके अप्लाई देंगे वह भर देवे पांच बरिस फर प्लेक कर देसो हम का ओकर बाद में तू फ्राई बाटे जाओ बैचलान में काम करो हेड फेज दैट इज ओन ग्रोथ फ्राक इन बैचल इज ना श्री नाम फर प्लेक कुंद के बात है भैया नीदरलैंड में ढेर निकले लेकिन आपको हम हिंदुस्तान स्थानीय में फोड़ के तरीज बताई दी है कि एकर प्लानिंग का है बोलेगा फन वीक है फेज दस है देर तक दैसन ऐसे दी नीट क्यों बता लें उसे उतरा है अप्लाइडिंग तो बोले हम लोग भरब है तेज विन वेस्ट्रा तीखी ओम दत वे नीट मेर क्यों है वन दत वे मेंशन अप्लाइडिंग फॉर हिट बैचलान द दाग वार ऑफ मेंशन हिंद डिप्लोमा करेंगे क्यों से एंकलक आल इन फ्लिक्टेक स्टापन एंड वे खान तो ये बात है हमारी जनता मिसी काबा के प्लान है भैया मिसी काबा का प्लान है ना कि अपन फरप्लीक कुंड के मुँह से पैसा भर और सुरगु कर कि हमारा देश में अच्छा अच्छा दतरा हुए अब देखो भैया तुम लोग जानो सुरिनाम में दुकान में के आगे वॉट्स बड़ा गरम गरम बिका है तो हाँ गरम गरम वॉट्स हुआ बिका भैया तो गरम गरम वॉट तो हम भी कीन के खाएल भैया मुर्गी के तो यहाँ बतावे है कि असा जोन आदमी वॉटसोन बेचे हैगा ओहू के छुट्टी ना भैया का बोले है रोफ ओफ के बारे में तेगो वॉट्स फॉर कूपरा भैया पंडित पलतन तिवारी वे और चोना कीट के हुकू पे भैया सबन वॉट्सवा का नमिया दागी समझाई नहीं वॉट्स मांगत रहा कौन ची मांगत रहा फॉर नो उमर वॉर द नमान सेल फॉर यार दख सामन मेट एंकल फ्रिंदर फोर अन बार फिर द तुन तुई क्रिमी नीले ओप ब्रोफिस प्लास फॉर स्कीनन और दोनों उतरल है और बोले द बकेन स्ट्रैट dat bekend staat als pillu. Kono pillu, bhaiya bekend hai pillu ke naam se. Aur kono ke pillu naam hai. Vervolgens haal de plotseling een pistool. Aur dagi se bhaiya isab ke faryari dukaan ke aage manawat raha. Sona ke keti ghinj ke leke chal gaye. De woordverkoper verzet zich even. Waarna ik een worsteling bhail hai. Deze confrontatie vuurde de rovers gericht op hem. Na het schot rende de verdachte terug naar de bron. और एक केती लेके भाग गए बोले अब जाओ फिरो वर्ड्स टू बेचो भैया वर्ड्स वर्ड्स करिए और बोले देखो वन द वर्ड्स फॉर कोप क्रिक डायरेक्ट सिपाही आइल है डायरेक्ट ऑन कीफिंग में सामन से अचरफॉलोइंग द ब्रॉन्स इज वार ऑफ द verdachte वन गेफ्लुक वेर लेटर अनबेहर aangetroffen मोम प्लेसिर में मिलल है और तू जाने भैया ई सब चोरवन जंगल बरा जोर कूदे है भाई हमरो केती सब निकेरी में कपड़ी घींची से कपड़ी के लुंडन छोट छोट घींच के और भगल है जब दौरैली भैया तो जंगल में घुस गए हमका जंगल में जाबे भैया हीरा ना ना ना ना ना ना ले जाओ केती हम मरे ना जा भैया जिंदगानी रही तो फिन केती की ना जाई मां हम ना जाबे छुड़ी भकौल के तो रांच राम लगन भी आ गया है तो भैया रांच आपको भी हम अपने प्रोग्राम में स्वागत स्वागत करते हैं हमारी जनता और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर हम और चलते हैं सुनाते हैं आप लोग जानो है हुफ दराद कितना दिन से फरार है भैया फरार है कब से वो भगल है भैया कई वर्षों के कोई ना पा बकोक और सखवा चले है और यहाँ अब जोगी का पूछेगा हम लोग के देना फोर सेक्टर अधीन से हू हेफ्ती हूफ दराद बराई अरे कैसे तू हूफ दराद के बराई कर ले बाटे अभी बतिया पूछे है दोंदर दाख मेदाख के उम्पंबारे मिनिस्टर तोत हेत के स्टार बस्कुल लखिंग फन फॉर्मालक मिनिस्टर हूफ दात रियाद बरुंतो के तेजा फरखादरे रिक्त फिया पे पार्लमेंटरी महेंद्र जोगी दी ओक देल आइट मांग दर फन कमिशी देर फरसुक हिफ ऑनर सॉक अन फ्राक अन दे एना फोर्सेटर अश्विन अश्विन से पूछी से जोगी पूछे है जोगी पूछे है जोगी वेल द वेटन ऑफ वेलकम वेसन द फॉर्मालक मिनिस्टर क्लीमा और हूफ दरात ऑफ द होक्ता वास्क स्टेल फन द इन getiende vordering. Ik wil aan u oriënterende vraag stellen. Ik neem aan dat ik die vraag mag stellen. U deelde mee dat u gewezen politieke ambtenaarsdrager op de hoogte heeft gesteld dat de vorderingen zijn binnengekomen. Mijn vraag aan u voorzitter, hoe heeft u de heer Hoef dat bereikt? Dat jogito puche bole tukaise bereikale baate adhinwa. Voorzitter baate uademia farar hai. Bole tu bole sab adamien ket op de hoogste sal ab adhin bata. Auna adhin reageerde en met een glimlach. U weet dat er zijn raadsmannen antwoordde. De parlementvoorzitter. Aur bhaiya Mahabharat. Nauro padhal hai. Gita kaise dhyan dewe hai. Ehi adhin. Aur yahan pe jhoot bole bhaiya. Bole hai ga tu jane raadsman advokat use. Uka bole contact kari se hans ke bole hai. NDB fraksi leader Ibu Jones. Concentreerde en vroeg een punt van orde. Volgens hem was het ongebruikelijk en procedureel onjuist dat de parlementaire je voorzitter onderdeel van de discussie wilde maken. Ik vraag uw spreker te verbieden om conform het reglement van orde van DNA vragen te stellen aan de voorzitter. Dit is procedureel niet correct. Stel Joost dat Jones tot de kutere bij ja, kan ook er voordeel meer het en meer kan hij bij ja. Die iedereen mag iedereen vragen stellen. Sabke mag je vraag stellen kareke. Dat is het gewoon mensen. Of je adhien bent. Of je president bent. Maar iedereen heeft recht namelijk iemand anders vragen te stellen. Tony. Aapskobhiham. Yaniki Hindustanse immigratie ke. बहुत बधाई देते हैं तो हम सोचिला जितने लोग हमारा फेसबुक पे है सुंदर हीरा रांच लगन और चित्रा और यानी कि इसरी टोनी राजा जोधिया आप सब के लिए एक गीत हम चलाते हैं आओ मिलके इसको सुना जाए ये है हमारे परवसी के कहानी
1: 140 बरिस हो गए जब हम लोग के पुरखों भारत देश के छोड़ के गए सुरीनाम देश। सपना देख के

1863 में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत हो गया रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उबरी से आजाद हो गया रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड के इजाजत दे भारत में मजदूर के खोजे के खातिर। ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू हुए। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आँखी में धूल झोंक के सुरीनाम ले बोलल गए, चल श्रीराम देश, उधर सब कुछ मिले। कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू।

के खड़तीन श्रीराम देश चले। वहां पर 5 बरिस कोनो जमींदार के खड़तीन खेती बारी करती, तब ढेर पैसा मिलत। और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिला। अरे खेतवा तो मिलल, बाकी बहुत में

पीछे छोड़े के परल आपन देश, बाकी अब सरनाम अपन देश हो गए सरनाम। अब हिया आई के अब इधर ही रहबे, जिंदगी अब हिया गुजरी।

0: तो दोस्तों ये हमारे उस्तादों के उस्ताद मोहम्मद शरीफ इसहाक थे, जो आज दुनिया में नहीं हैं लेकिन अपना आवाज़ हम सबको दे कर गया है। बहुत महान थे दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो जितने लोग हैं यानी कि 100 DFF तैयार हुआ है हमारा इमिग्रेशन के, आप सबको हमारी ओर से, हमारे समाज की ओर से, रेडियो फाउंड के तमाम कोलीगा डायरेक्टली लेडी की ओर से आप सबको बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई है। प्रताप अवतार भी आ गया है, लेडिंग शीफ आसे भैया बेटा सनही भी आ गया है। आपको तहे दिल से प्यार देते हैं और आपको हम स्वागत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर और आगे को चलते हैं हमारी जनता। तो बातचीत ये है हो रहा है सूरीनाम में, आप लोग को भी बताए थे कि क्वेक जो क्वेक है सूरीनाम में, क्वेक के बाद हम करते हैं सूरीनाम में क्विक जो है चोरी भय ला भैया अब एक बारे में आप लोग को तो हम और ठीक से बताएंगे। तो जो कॉर्प शेफ मेल्फिन पीना से जोगी जोगी महेंद्र जोगी यानी कि दयाना मेकर बारे में जो मिनिस्टर फॉर यूटिशियन पॉलिसी के हनीश मरोरस से सवाल करी से कि कैसे इतना ढेर क्वेक चोरी हो सके है। एगो कंटेनर में जोन पॉलिसी ब्यूरो के परासी में धरल है, कैसे चोरी हो सके तेकर बारे में ए बे जोन से अब ओम चटकल के कहे फरकवा तो स्टेल। अरे भैया तू तो बाटे देना में एगो लड़का भी फ्रॉक स्टेल कर सके है कि कैसे चीज हुआ चोरी हो सके तब एक बारे में कॉर्पशेफ मेल्फिन पिनास जो है वुर्स दाखद्री यूनियो के गैल परसोलक ऑन द सुख करे बसुख खबर अन पॉलिसी खैर फ्लाइट में वार्तवेई कफूल साकर सेंट्रल स्टोंडन ऑन फ्रेमिंग फन क्विक आइटन कंटेनर फन अफदेन फ्राउड एंड एंड ऑन ट्रेमिंग सेन फन डेनी फिला पार्क। तो लोग जानो डेनी फिला पार्क में हुआ पे एगो पार्क है भैया और जाए के पोकलेन मुंगरा पार्क और फिला पार्क में एगो मशीन है ले के हुआ आदमी लोग के घर के तरह तुरान है भैया और जो पोकलेनवा गए लोग के संगे बड़का बड़का बफेले हैं कदमी जड़ जबर आका कानी से इसने फिर तक बोले कौन जी भैया जबर जबर बंदूक लेके गए हैं कि वो सबके कोई कुछ ना करे और घर में अब सब इन बूदल है सब इन बूदल है भैया तूर तार के घर प्लाटा कर दी। इसे जनता चिल्ला है ओकर घर जहाँ पे 20-25 बरिश रहे और गई है सब घर तुराई गए है। तो एक बारे में बहुत हिंचा तानी भय लेकर बारे में देसी गई है और यानी कि पॉलिटिक भी ओमा बमुई करी से चीज बंद कर दी से स्टॉप करी से और अब सब पूछे है हनीश मोरर के जो हुआ पोता जबर जबर अनमियन गला बड़का बड़का बंदूकियन लेकिन सब के रहा उस अब कह रहा कि स्कोतु सूरीनाम के ना अनपक क्रिस में सो वापन ले के हुआ गई लेगा और उतरा घर तुराने ब्लैक भैल है कि जगहियन जितरा हैगा त्वेई केर बिचाने भैया दुई डाई बिकान है जो नरमियन उना पैसा लांटी जगहियन नरमियन पैसा भर भर एरो भर भर जगहियन कीने रहा अपन कफलवा फिला पार्क के और मुंगरा के मुंगरा न, न, न, न, कॉम्प्लेक्स के तब वो उस सबके घर तुराई गए। एक बारे में अब बहुत घींचा तानी है तो अब यही स्कोतुआ मेल्फिन पीना स्कॉरब शेफ दुई चीज गए खैर फ्लाइट में पूछे कि ये चीज कैसे हो सके है ऑनर सुख गए करे क्विकवा कैसे चोरी भैल है। तो बोले हैगा इन्फॉर्मेर बेर फ्रॉड ऑफर फॉर द्वेनिंग फन हुफिल है क्विक कॉरब शेफ नीम द साक hook up and he direct unfilling the veiligheid regeling laten treffen aur jitra cheez abhi container mein raha sab wahan se froisi karwa di se ab froisi to bhai le bhaiya kyun kahan gaye le froisi ke sir naam kisi bhai vishwas na hai bhaiya pratap avtar vishwas na bhaiya bole hain je ke moos ke dhariyo aur kaise bole bilar ke dhariyo na bhaiya heera doot rakhave ek taka hoega to hamara fatingan ramraj bhi aa gaya hai aapko bahut pyar se swagat karte hai bhaiya fatingan तब धरियो बिलार के दूत रखावे के तो कैसे रख के रख कैसे वो रखाएगा। तो कौरव शेफ अब गए ऑन सुख करे कि चीजवा कैसे है और इंस्पेक्टर बेल ऑफ द इनफ्रॉड किंग पिनास ओक नाना आनखिफ्त दीन्स और बोले है मुंगरा प्रोजेक्ट के बारे में भी गए ऑन सुख करे डेनिस फिला पार्क सॉर्ग फॉर फील फ्रागन ऑन द मेयर ओवर द रोल फॉर द पॉलिसी टाइडस द ऑन्ट्रेमिंग नार द आनलाइडिंग daarvan is middel een onderzoek gestart door een gespecialiseerde eenheid van de bestrijding van zware criminaliteiten. Gebaren mee, toen viel ik parken moera, toen loke tra ketra ghar en mee loke in boedel, bhaiya jema irko lagal eis kasie, ghar mee abbe sab in boedel hai, ketra admi hega joan ke huwa fakansi huis banai raha, apan ghar banai wek raha, au gwaito land mee kaam karat raha, jai jai dhire dhire apan ghar banawat raha, ketra admi joan rahat raha, bhaiya sab ke ghar toot ge hai, ti bahu दुख के बात हैगा सूरीनाम देश के बात चित हमारे जनता। अब देखो यहाँ पे हम बोली तरी जाई तो एनडीपी का बोले है बोले फिना शेल मोदर पुल फन तीन यार लॉस ये नीट इन फाइव यार ऑफ और बोले मोदर पुल के बोले चाटान जो ची है बोले जो धसान चाटान है बोले है दस बरिस के बोले पांच बरिस में थोड़ो बोले ओके ऑपलॉस कर पावे जब से देखो तो चहटियान है भैया फतिंगन कैया सफा भइल है कैया सफा भइल है। एनडीपी कमोवेन के कोऑर्डिनेटर शांतल सामुएल तरख दत मुदर पोल नीत इन ए स्टाफ कर फरांदर इन द ड्रिंक वाटर दिर फरकलेकिंग एक्टर ओक फन टूपासिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन रखेरिंग सन टोकिन 2020 आंट्रो अ फाइनेंशियल मुदर पोल दी टिल्ट गेड्यूरेंड 10 यार इज ऑनस्टान लॉस इन नीत बिन इन 5 यार बोवेनिन वर्दर द एस्टे ट्वी रखेरिंगसयारन overschaduwd door de wettelijke COVID-19-pandemie, de economie en overal terwijl het zwaar trof. De दस बरिस या के चाहटा में लौटत रहा भैया तो अपन चाहटा जोन में तू लौटत है अब जाओ अपरो एक गिलास में धोइयो या परमानेंट में न हो ये सफा तो ना हुई भैया आधा सफा जो होवे है ना अरे तो फिर से वही में लबड़ा जाए कौन आवे है जो समय पे फरकीसें तैतेगा तो चाहटवा लभेड़ल करी कि सबके हम का बोले खूब खवाई पियाई कि आओ हम में तू लोन करके फिन बैठाओ फिन बैठाओ और वही में काम दिए दुनिया भर के आदमी लोग के अवदेशवा तब चाहटा में हुए तो जोन अदमिया ले देसवा तब बोली हेगा देखो कितना हानि करके देश हम कैसे देसवा संहारी देते यार इन यार इन यार ऐ थे चीजुआ भैया सन नाम के रवाज है चीजुआ तो कैसे भला देसवा हमार हमारे देसवा कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरीगा सुधरे वाला ना है हमारे जनता। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों जॉनी के कहना सफा बात है अच्छा लगी तो ले लियो खराब लगी तो हमारे। अब देखो मिनिस्टर भैया एलफीफे के नूर सालीम के बारे में यो ही नूर सालीम है भैया फतिंगन जोन समय पे एनडीपी के समय पे ई परामारी बहु के देशे रहा भैया और आप लोग जानो हैगा एक रात में जो तेकन निकल ले रहा कगचुआ तुम लोग जानो है ना किल के वहां पे जगहियन बटाई गया रहा रात भर में वही नूर सालीम है भैया वही नूर सालीम है। अब एनडीपी जीतल है तो एक सबन मिनिस्टर बनाई से एलफीफे के मिनिस्टर बनाई से भैया अभी एलफीफे के मिनिस्टर तो बन गए हैं मैं एलफीफे के मिनिस्टर तो बन गए हैं एकर बेटवा कौन चकल लस करी से। अब देखो ओकर बात हम आपको बताई है ओके नूर सालीम माइक नूर सालीम हैगा मिनिस्टर फॉर लैंड बाउ फेटिल एंड फिशरी एलफीफे के एकर 20 बरिस के बेटवा का करी से मुन्नराइन भी आ गया है आपको हम स्वागत करते हैं। तो ये 20 बरिस के लौंडा का करी से भैया और एक के ये अपन बाप के मतलब लांटी के ओतो चलावत रहा भाई हाँ और इलांटी के ओतो चलावतरा बोले है तेबे द्वे मानड वर्दन और बोले है को 15 यार के बरो मेगो लंडा 15 बरिस के ओके समर रूफ करी नूर सालिम हुआ के बेटा हुआ 20 बरिस सिवा वाला रूफ करी से भाई यहां बताए गए रूफ करी से बपुआ के कौनची के कमती है के बेटवा जा है 15 बरिस के लंडा के रूफ करे बाप मिनिस्टर और लड़का ने देखो का करे भैया बाप चाहे अच्छा है चाहे खराब है मन लड़कन बाप माई के नाम गिराई दे है आप लोग देखो जानो संतोखी के बेटुआ भी अपन बाप के कितना बड़का बड़का बात बोली से उधर बहुता के बेटुआ बोरंतो आज तक बन है और बेटवा और करेगा और है वो बन रहा भैया वो निकल है तो लड़कन अब उधर एगो और भैया गाय चोराए रख के गया एथनल के बेटवा तो बड़ा बड़ा पोसीसी वाला आदमी लोग के लड़कन का नाम गिराई देवे ऐसे यहाँ पे नूर सलीम के बेटवा एगो 15 बरिस के लौंडा के रूफ करी से बरूफ करी से एक बारे में अनखिफ्त भैले भैया पुलिस मांगत इधर बकेंदर बेदे फरदख्त न उफले सिद बेद ओएम द साक वेर फॉर फोरकन फोर कलेक एरसी लगे और बताई गई है यहाँ पर बताई गई है कि ये सब लंडन जो नहीं का दिन फुरतई से ऊपर से भैया एयर पुलिस ऑनरसुक ब्लैक दर फरदख्त से इन दिन फुरतई फॉर द मिनिस्टर फॉर एलफीफी फॉर प्लाट्सन टू से ने मिंदर यार का ब्रॉन्फिस से तीखन क्वामन volgens de aangifte zou de slachtoffer vervolgens tegen zijn wil zijn meegenomen als op persoonlijke mishandelwikkeris. To lanti oto dewe heiga minister lukke ki okar betwa jao chalao aur dam pe payo koi ke roof kar liyo e hamara desh hai bhai e hamara desh hai janta hua blasting bhare hai oto hua ke janta ke blasting se oto hua ki na hai aur minister apan betwa ke वे बोले जाओ रूफ करो ये भैया कैसे देशवा चली और हमारा मीडिया जो सूरीनाम के है इस फराख ना जाने स्टेल करे ओमदान द मिस्ट मीडिया हीफ नामलक दान पॉलिटिक फोर डील तो उना जाएगा पूछे भैया कि और एक बेन ही एक अपील मालखिन फोर डील में निमान तो सच्चाई और मीडिया मुत आल्टेज फ्राई कुनो प्राते फ्राई कुनो प्राते जैसे है ये मुत निमान फोर ट्रैक जब नूर मोहम्मद के में इंटरव्यू करे जो बदमाशी करी से चोरी करी से तो ओके चाही जहल में जाए के सो इसत ओको फरदीखिंग ना चाही करे के जब हुफदरात लूट के गईल है तो ओके चाही जहल में जाए के ना ओकर ऊपर तो लो हाथ दर के ओमदा तू एंड ई पेयर है तो ओके ना माखे फॉर द रेक्टर जाए के सो खान अल्लाह नी दोर खान अबे को छोटा आदमी घरे चियो पर दे दे खोई सके धोई सके आसान भले के बड़का बड़का आदमी लोन बचावे है इंग्रिड बाउटर्स बोले हुफदरार के ना चाही फॉर डील करेंगे एगो मलाइनी बोले है अधीन जोन फोर्स से तरह आसान भले ये छोड़ के चल गए हैगा तो हम लोग के रेक्सटाट कहाँ है सूरीनाम में दोस्तों अतिस बलखलक फॉर ओंस लैंड सूरीनाम दा गात तो हम एंड दैट इज गोइंग द वारहेड हम किसी को फोर ट्रैक न करीला तो जनता हम जाई भैया अब जइयो सूरीनाम देश में तो हुआ पे भैया हॉलैंड के कुत्ता पइयो हां तो कुतवा जो है भैया बारा जबर नकुना है ओके ओकर नकुना किलोमीटर से सूहे हैं झुर मछली ना सूहे कड़ाबू आबू ना सूहे खाली कोका सूने भैया और कोका जो सूही तो हुआ टप्प से बढ़ जाई कुत्ता ना काटी कुछ ना और ओकर जोन का बोले है बखले इधर है बास से ऊपर सीन जान जाए बोली कम में ही कॉफर खोल के और कोकई ने तोर पाई आई तो नीदरलैंड के अम्बासाद जो बा सूरीनाम में कुतौवा के देश से ऑफिशियल दृक्ष पीसो तो जितना आदमी दृक्ष फुरिक्स लेके आवे भैया पहले तोर स्वागत करी हॉलैंड के कुत्ता तो ओकर बारे में कॉल लगे मारा शीशे ही लगे जइयो ऐसे बतिया है मिस ऑफ ऑन फन प्रोजेक्ट इज दैट ही मेड अ बास्ट बासस वॉट ऑफ फॉर द न्यू हॉन्डन ब्री खाने के बारे में दोस्तों सूरीनाम देश के भैया चार मिला पकड़ा ने यहाँ इसके फल पे पैसा वेतवास करता भैया हाँ और नमुआ हम सुली बाटी कौन कौन है ओ माँ बाकी जब लेक मीडिया पे ना ही हम नमुआ ना बतावे ना अति स्त्रीमेंस अति खहिम जे तो के पकड़ी से वेतवा सके चीज और वो बतावे है कि इतना सन्ना चार दुगो औरत दुगो मरत है गा सूरीनाम के यहाँ के पोल पे कल के बहुत ढेर पैसा पाए सके दुबई में मिलियनन के घर रहा मिलियनन के साकर बोले अंदर नीमर है सूरीनाम के और वो के पकड़ के सिपाही यहाँ बंद कर इसे का फोन वेतवा से पैसा के बारे में लेकिन नाम ना लिखल तो हम ना तब उन डांस हम नमून सुन चुकली के है मदखा एक नीचे का उम्दत नहीं बकेंटिस एक वेल सेल्फ नीट इन प्रॉब्लम एंड को मोमेंट्स तो ऐसे बात है और जो क्विकवारा भैया फेफ ऑन द सीफन डर तक किलो क्विकवा चोरी भैले कंटेनर कंटेनर में से भैया कंटेनर में से चोरी भैले अरे भैया तू एन तक तक किलो हाँ त्वेयन तख्तक किलो उजारे कामिल लसी तागोरी चरण गजरी हाँ आपको स्वागत करते हैं तो त्वेयन तख्तक किलो भैया सेफन तक ब्लॉक सेफन तक ब्लॉक में पेर्स कर कर भैया तरीकी कर कर भैया दबाए दबाए दबाए दबाए धरे रहा कोका इन 80 किलो भाई दो पिस्तौल मिलल है सूरीनाम में बिलल है जहां पे सिपाही अंडर सुक करता होम पर स्ट्रात में बेड अंडर सुक इन द फुरते एक वेदर मिर्दर ब्लॉक में कोकाइन और दुगो वापन मिलल हैगा ड्रग्स फंग इन बेड फुरते एक एटलक एट कम और मेर दन 80 किलो हेड अंडर सुक नाद हेयर कोन फ्रॉम द ड्रग्स द वापस इन बट अप्स बटिया ई है भैया क्विक चोरी हुई गे इको कई नुआ का होई हम कोई के बस क्यों लख न करी लामा दैट इज हाउ द वार हेट मेन से द फॉरथ्रोट हेट ऑफ द पॉलिसी फॉर सूरीमा सूरीनाम दी राग टेलकंस वेग भैया दी राग टेलकंस वेग ik ga proberen een keertje toch meneer Hanis Manoret aan te bellen zodat hij namelijk beter kan uitleggen wat gebeurt het ohi jab aila bhaiya net baithal raha to ohi Hanis Manoret bole raha bole hai ga mo rek konte kyu bole hum rek karke to ke pakda bhai और बोले नो तेस में तो जोगी बोले बोले नो तेस में बोले स्कूतून तो कह तेस करे पुलिसी ब्रो में से क्लोइस में से पैसा चल जाए ई चल जाए यू चल जाए द्री होंदे सो फील अन किलो क्विक चल 537 किलो क्विक चल गए हैं तो बोले कैसे एकर बारे में है तो ये बात त्वेयन तख्तक किलो कोकेन भैया पकड़ान है हमारे जनता ऐसे बतिया है तो और आगे हम आपको सुनाई है भी बोले रही सिपाही भी मांगे अपन नाखदीन के पैसा और सिपाही मांगे नाखदीन के पैसा ओहू सब मांगे हैगा ऑफ हेल्दरिंग एकर बारे में हमारे जनता हमारे दोस्तों तो आप लोग को हम बोली एगो गीतवा सुनाई दे तो शासार शारसा सारधा जवाहिर आ गया है हमारा प्रोग्राम में आपको हम स्वागत करते हैं
1: जब श्री राम देश आए थे हम

दोस्तों एक घंटा हो चुका है, मुझे प्रोग्राम तो रुकना पड़ेगा ना। और अपना देश को हम बहुत याद करते हैं, हमारा मातृभूमि श्री नाम है। और अगर जब किसी ने उस पर उंगली दिखाएगा तो दिल में तो चोट लगेगा ना, चाहे वहाँ के लोग चाहे यहाँ के लोग। अपना मातृभूमि तो अपने ही मातृभूमि है हमारे दोस्तों, और जब अपने ही लोग उसको जो लूटेगा तो बताना तो पड़ेगा, चिल्लाना तो पड़ेगा ना, रोना तो पड़ेगा ना।

भाग लिए हैं, आप सबको हम बधाई देते हैं। हमारा एमिक्रासी के 5 यूनिट का जो हुआ है, और सीता गौरी चरण है, शारदा है, चित्रा है, मुन नारायण है, राज राम लगन है, तोनी इसरी है, सुंदर हीरा है, चित्रा अवतार है, धर्मेंद्र इसरी है, प्रताप है, राजा अयोध्या है। आप सबको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम राम, नमस्कार और प्यार भरिए। राम तो फॉल खेर।

और अपना देश छोड़ के बचवा गईले सूरीनाम में आई हिंदुस्तान से इमिग्रेंसी जो फेफ यूनिक होता है, उसलिए इस गीत को हम चलाते आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद और हरीश बालक की ओर।

और अपना धर्म कहाँ ही छोड़ेंगे। श्री बालक जी संदेश देकर पठाए है कि अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं हिंदुस्तान से एमी खरासी के एक और गीत सुना जाए, वो है लैला लाला राम हरिद्वार सिंह दीप महावीर, एमी खरासी देश भक्ति का सॉन्ग।

और हिंदुस्तान से इमिग्रेशन का ये गीत हमने सुना दिया। और जब ये सब गीत चलाते हैं तो कैसे अपना उस्ताद कुस्ताद स्वर्ग मोहम्मद शरीफ को हम पीछे छोड़े।

0: और सुन ले मोर कहानियां के बाद में एक और हो जाए
1: हालात। अब आप लोगन सुन बाबा के कहानी।

और दोस्तों हिंदुस्तान से इमिग्रेशन के गीत आज हम आप लोग को सुनाते हैं, एक और हो जाए।

और दोस्तों, हिंदुस्तान से इमिग्रांसी के उपलक्ष पर इंदिरा जगरू भी आप लोगों को सुनाए चला जाए। आज हम सब रवि उदित राम क्या सुनाते हैं।

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिस राम खेलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिस राम खेलावन इस ओंस टॉपर, एन फ्रॉम द टॉपर्स नेचुरली द हेल मो यूनिवर्स फॉर ओंस सरनामी हैव गेसोन। एंड लेट्स वे फॉर गाना लिस्टर फ्रॉम क्रिस राम खेलावन।

Oh, wie kan het anders zijn dan onze echte originele Mohammed Sharif Zaak? Yo, is dunya mein nahi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. We have ook een Den Haag imam die over Surinaams lied hamara sarnami ke bhasha wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ओनसे रबिन बलदेव सिंह. रबीन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबीन बलदेव सिंह जो डन हाख का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरिनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे देनहाख के रबीन बलदेव सिंह हैं। मैं से वहाँ नार ओन से फॉलोस्लीत या दतमुत ओक कीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरिनाम से फॉलोस्लीत इन सरनामी हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरिनाम से फॉलोस्लीत को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जोंग तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरिनामी गीत सुनाएंगे।

और मेनसे ये है हमारा श्री नाम आज दिस सोर्ट लीचर से हील अंदाख्त खात लुस्टर मेनसे क्रैक खून किप वेल फन। हाँ, अगर ये कुछ अपना खून में है, अपना शरीर में है, तो ये सब गीत जो है तो आपको झकझोर देते हैं कि हमारा देश श्री नाम तो अपना ही देश है जहाँ पे हमारा जन्मभूमि हुआ है। लेकिन सब लोग को वो फीलिंग नहीं है, लेकिन जितनी लोग के आपको फीलिंग है, तो हम चलते हैं एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से श्रीनाम देश में आए हैं वो भी एक हम रख देते हैं।

0: Blue Wonder. 100% krachtig reinigen, 100% geur. Wonderbaarlijk krachtig.
1: Yannicky, Guru Dat Kalasing bhi ek Suriname kan aur bahut bada kalakar the. तो इसके बारे में कितने लोग को तो पता है कि ये गुरुदत्त कला सिंह क्या है, कौन था. तो ये भी एक गीत को गाया है, हम हैं सरनाम के लड़के.

पुराना कलाकार है गुरु दत्त कल्ला जी का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम के, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौर क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

शादियों को जो भारत से आए थे, आज उनके दुआएं से सुख की हवा चलत है।

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपन स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला एंड लास्ट में से दैट इज निमत अंदर्स दन ओन से एक सूरीनामी हमारा दिए सत्यनाना सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनंद रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मक्का सत्यानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ऊर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरना।

दो लफ्जों की है ये कहानी, मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमा ने इस फिल्म में काम किया है, गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों, और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

रूट इन गोलखा, प्रोग्राम यहाँ से हम चलाते हैं हमारे, तो यहाँ पर क्या है आओ सुना जाए ओल्ड एज गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बहार प्रोग्राम है।

जन्म ओल्ड एंड गोल्ड गांजों हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एन महमूद इन गोवा अथवा से सुपर हिट फिल्म में जी। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिकी लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं माइती मुकेश की ओर की जोर।

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेल का क्लियर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

फन होम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नामों और निशान नहीं।

और टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को 1955 का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी, मोफी के नाम है मुनीम जी, जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्माश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और द्वैत सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत। एंड सेस का ये सॉन्ग है।

दिल के भंवरे करे पुकार अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एक गीत है दोस्तों देखती होंदत एहसास फेर तक का मूवी का नाम है अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी मूवी का नाम है। महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों। Toen was ik nog niet eens geboren, ik weet het niet. Ik heb deze film ook niet gezien. Maar हमारे दोस्तों जो है यहाँ पे रेडियो पर वो सब इस फिल्म देख चुका है और हमसे कहा कि जॉनी जरूर चलाना, तो हम जरूर चलाएंगे। आओ मिलकर सुना जाए ये कालम नहीं है दोस्तों।

पी हम उड़ जाएंगे। मूवी का नाम है अनमोल घड़ी दोस्तों, और इस फिल्म में इस गीत को गाए हैं शमशान बेगम और सोरेबा अम्बाली वाली। तो ये सब नाम तो हमने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां सुरैया, सहूर राजा अनवरी, मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं। फिल्म के नाम है जाल नेगेटिव हंड्रेड एंड ट्वेन फेफ्थ का ये सॉन्ग है दोस्तों, और इसकी ताव सुना जाए। दिस इज हेमंत दादा।

Jal, 1952 का ये सॉन्ग है और वो बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, तो हम आपको उस दौर उस यादों की ओर लेकर चलते हैं जिस मूवी के नाम है दीदार। 1951 का ये सॉन्ग है और अगर बचपन में आप किसी से मोहब्बत किया है तो आप इस गीत से उसको या उसकी याद कर सकते हैं।

भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत की जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सड़क के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ। और कौन आएंगे? महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तो पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे। तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत के ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन। सौतन नहीं खनती इंद्रियन तख्त का ये फिल्म है दोस्तों, और ये मौफी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है कि जोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

और रजेश खन्ना थी ना मुनीम का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू के ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है, नवीन सरवन का म्यूजिक है।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं, कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, और एक वा बोले है एक वोर्थ अख्तिन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई गति होंद नई हनन जीवन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए, और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है? काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

उनमें पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना और बुरा है जमाना। सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन तरह से आना ये गीत आपको बताते हैं।

Over to Mr. Asi और मेरे जिंदगी में शामिल जरूर होना। तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ ऑफ नाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।

ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त नहीं खती 165 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी, मेरी हम सफरी, और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो, हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निमर्रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई, और गुस्सा मत कीजिए पदमाश श्री मोहम्मद रफी, और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरे अरे क्यों खफा हो गई है और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

और किसी कविता होगा तो कविता जी आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

0: और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो।
1: दोस्तों मुकेश माइती मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस और वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैलेंद्र।

उम्र लग जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। है करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

बेताब से भी आप सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो एक भजन है, और ये भजन हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के लिए और सभी दुखी प्राणियों के लिए।

सुंदर शाबाश जिन हमने पेश किए हैं आप सभी सुनने वालों और सभी दुखी प्राणियों के लिए। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में।

मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हिमालय की गोद में। किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं, तुम बिन जाऊँ कहाँ।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊँ कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सम कभी तुमको चाह के अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों लता जी की आवाज़ में आप सुनेंगे इस बार और फिल्म का नाम है कति पतंग गीत का बोल है न कोई उमंग है न कोई तरंग है मेरी जिंदगी है क्या एक कति पतंग है

0: घंटी के आइकन पर मेरे आने वाले।
1: अभी आप सुन रहे थे ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या इकती पतंग है। उपहार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं माझी नैया ढूंढे किनारा।

अभी आप सुन रहे थे माझी नैया ढूंढे किनारा, मुकेश जी की आवाज़ में हमने ये गीत पेश किए हैं। फ्रॉम द मूवी उपहार से आपने सुने हैं। फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पर आप सभी ने चुन किए हैं सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे जो उनकी तमन्ना हो बर्बाद हो जा। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे है आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को बता दूं कि आधे घंटे तक लगातार हमने कुछ सेंटीमेंटल सॉन्ग्स आप सभी के वास्ते पेश किए हैं, और अब कुछ बदलाव हम लाने वाले हैं प्रोग्राम में। तो चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे अरे आने वाले आ तू देर ना लगा, और फिल्म का नाम है कहीं और चल। लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक फूल दो माली से हम पेश करते हैं सुनने वालों, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।

एक फूल दो माली से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, हो गए तेरे हो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। फ्रॉम द मूवी यानी द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। चलिए मिलकर सुनते हैं प्रोग्राम में

अभी आप सुन रहे थे हो गए तेरे हो गए प्यार में तेरे खो गए ये ना पूछो कब क्यों और कहाँ। द टाइटल फ्रॉम द मूवी कब क्यों और कहाँ से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे। रुक जा ए हवा फ्रॉम द मूवी शागिर्द से हम पेश करते हैं।

रुक जा ऐ हवा, थम जा ऐ बहार, भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। और ज़रा सा हम देखें तो सीता और गीता, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं एक और गीत है ये, जिसमें कुछ हवा की बातें आती है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चलो। घड़ी की ओर जब के हम देखते हैं तो ठीक यानी समय हो चला है विज्ञापन का, तो चलिए मिलकर सुनते हैं विज्ञापन।

0: Miami Radio.
1: Destiny Events presents Unforgettable Melodies of Bollywood. Nagme with all renowned artists from Mumbai. Sarigama Pa winner Ishita Vishwakarma.
2: एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते. लता जी आपको सुनाने वाले हैं अखियों को रहने दे.

लता जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी बॉबी से हमने पेश किए हैं अखियों को रहने दे अखियों के आसपास। आरसू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते तलत महमूद जी की आवाज में ए दिल मुझे ऐसी जगह ले जाओ।

फ्रॉम द मूवी आरजू से हमने पेश किए हैं तलत महमूद जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे रहे ना रहे हम।

0: Wist je dat banken jou...
1: अभियाप सुन रहे थे रहे ना रहे हम महका करेंगे लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ममता से हमने पेश किए हैं ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं चलिए मिलकर सुनते हैं

0: Campina Quark is er nu ook voor onderweg.
1: अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज में ए जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, ये सुंदर सा सॉन्ग आपको सुना रहे थे महेंद्र कपूर जी। फ्रॉम द मूवी अनमोल मोती से हमने पेश किए हैं फूल आहिस्ता फेंको, प्रेम कहानी है फिल्म का नाम, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।
2: आपका ये बजा

प्रेम कहानी है फिल्म का नाम, और अभी आप सुन रहे थे फूल आहिस्ता फेंको। लता जी आपको सुना रहे थे मुकेश जी के साथ में अनुरोध। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे।

किशोर डा अभी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी अनुरोध से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, झूमता मौसम मस्त महीना, मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी उजाला से।

झूमता मौसम मस्त महीना अभी आप सुन रहे थे। लता जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले थे। ये दोनों एक और सुंदर सा गीत आप सभी को सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी परवरिश से।